नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरूआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच

0: पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

इतिहास केवल पुस्तकों में नहीं लिखा जाता, इतिहास उन लोगों के जीवन में लिखा जाता है जो अपने सुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीते हैं। एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है तो वो केवल पहरा नहीं देता, वो करोड़ों सपनों की रक्षा करता है। एक माँ जब अपने बेटे को देश के लिए विदा करती है तो उसके आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं। त्याग का स्वर बहुत ऊंचा नहीं होता, वो अक्सर मौन होता है, और यही मौन त्याग राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बनता है।

या इन सब के पीछे भागते हुए मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है कि वो वास्तव में क्या खोज रहा है। वो खोज रहा है शांति, एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो, एक ऐसा आनंद जो वस्तुओं से न मिले, एक ऐसा सहारा जो समय के साथ बदल न जाए। भारतीय संतों ने कहा, जिसे संसार में खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। भक्ति उसी भीतर की यात्रा का नाम है। भक्ति केवल गीत नहीं, केवल मंदिर नहीं, केवल पूजा नहीं। भक्ति वो क्षण है जब मन अपनी अशांत दौड़ को छोड़कर ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता है।

मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ खोजता रहता है, बचपन में खिलौने, यौवन में सपने और आगे चलकर सफलता। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मन पूछता है, क्या बस इतना ही? तभी भक्ति का द्वार खुलता है। भक्ति हमें बताती है कि जिस सुख को हम बाहर खोजते हैं उसका स्रोत भीतर ही है। जिस शांति को हम परिस्थितियों में ढूंढते हैं वो ईश्वर स्मरण में छिपी है, और जिस प्रेम की हमें तलाश है वो परमात्मा की करुणा में सदैव उपस्थित है।

हम प्रार्थना क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि ईश्वर हमारी हर इच्छा पूरी कर दें, या इसलिए कि जीवन में कोई कठिनाई ना आए? भारतीय मनुषा कहती है, प्रार्थना परिस्थितियां बदलने से पहले मनुष्य को बदलती है। प्रार्थना हमें विनम्र बनाती है, वो हमें याद दिलाती है कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर अहंकार का भार हल्का होने लगता है, और जहां अहंकार हल्का होता है वहीं भक्ति का उदय होता है।

वो मौन में सुनाई देता है। कभी कभी कुछ क्षण अपने लिए निकालिए, न कोई शिकायत, न कोई अपेक्षा, केवल मौन। यही मौन धीरे धीरे ध्यान बनता है और यही ध्यान मन को परमात्मा के निकट ले जाता है।

इस संसार में शोर बहुत है, बाजारों का शोर, विचारों का शोर, चिंताओं का शोर, लेकिन ईश्वर का स्वर शोर में नहीं सुनाई देता।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन, विषय है संबंधों का महत्व, वाचन स्वर अखिलेश बाथम के।
1: मानव जीवन केवल व्यक्तिगत अस्तित्व का नाम नहीं है, बल्कि ये उन संबंधों का समुच्चय है जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। जन्म के साथ ही हम कई रिश्तों में बंध जाते हैं और जीवन के हर पड़ाव पर नए संबंध बनाते जाते हैं। यही संबंध हमारे जीवन को दिशा देते हैं, उसे अर्थपूर्ण बनाते हैं और हमारे अस्तित्व को संपूर्णता प्रदान करते हैं। संबंधों की विशेषता ये है कि ये केवल औपचारिकता नहीं बल्कि भावनाओं का गहरा जुड़ाव होते हैं। माता पिता का स्नेह, भाई बहनों का अपनापन, मित्रों का साथ, गुरु का मार्गदर्शन और सहकर्मियों का सहयोग, ये सभी मिलकर हमारे जीवन का आधार बनते हैं। हर संबंध अपने भीतर एक अलग ऊर्जा और सीख लेकर आता है। ये हमें न केवल जीवन जीने की कला सिखाते हैं बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। वर्तमान समय में जब जीवन की गति अत्यंत तीव्र हो गई है, तब संबंधों की प्राथमिकता कहीं न कहीं पीछे छूटती जा रही है। तकनीकी प्रगति ने हमें भले ही दुनिया के करीब ला दिया हो, लेकिन दिलों के बीच दूरी बढ़ा दी है। लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से संवाद करने के बजाय स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। ऐसे में संबंधों का वास्तविक स्वरूप कहीं धुंधला पड़ता दिखाई देता है। ये स्थिति हमें ये सोचने पर विवश करती है कि क्या हम वास्तव में अपने संबंधों को वो महत्व दे पा रहे हैं जिसके वे अधिकारी हैं। किसी भी संबंध की नींव विश्वास पर टिकी होती है। विश्वास वो अदृश्य शक्ति है जो व्यक्तियों को गहराई से जोड़ती है। जब संबंधों में विश्वास होता है, तब संवाद सहज हो जाता है और मतभेद भी आसानी से सुलझ जाते हैं। लेकिन जैसे ही विश्वास कमजोर होता है, संबंधों में दरार आने लगती है। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम अपने व्यवहार में ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता बनाए रखें, ताकि संबंधों की ये नींव सदैव मजबूत बनी रहे। विश्वास के साथ साथ सम्मान भी संबंधों को स्थायित्व प्रदान करता है। हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपने अनुभव होते हैं। जब हम दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं, तभी संबंधों में संतुलन और सामंजस्य बना रहता है। किसी भी संबंध में एक दूसरे को समझना और स्वीकार करना उसे और भी सुदृढ़ बनाता है। यही समझ और सम्मान संबंधों को दीर्घकालिक और मधुर बनाए रखते हैं। संबंधों को जीवंत बनाए रखने के लिए संवाद अत्यंत आवश्यक है। संवाद वो सेतु है जो दिलों को जोड़ता है। जब हम खुलकर अपने विचार और भावनाएं साझा करते हैं, तो संबंधों में पारदर्शिता बनी रहती है। वहीं संवाद की कमी कई बार गलतफहमियों को जन्म देती है, जो धीरे धीरे संबंधों को कमजोर कर देती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और अपने मन की बात भी सहजता से व्यक्त करें। जीवन के कठिन क्षणों में संबंध ही हमारे लिए सबसे बड़ा साहस बनते हैं। जब हम निराश होते हैं, तब यही संबंध हमें आशा देते हैं। जब हम अकेले होते हैं, तब यही संबंध हमें साथ का एहसास कराते हैं। एक सच्चा संबंध वही होता है जो केवल खुशियों में नहीं बल्कि दुख के समय भी हमारे साथ खड़ा रहता है। ऐसे संबंध हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर होते हैं, जिन्हें संजोकर रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अंततः ये कहा जा सकता है कि संबंध ही जीवन की असली पूंजी है। भौतिक उपलब्धियां क्षणिक हो सकती हैं, लेकिन सच्चे संबंध जीवन भर साथ निभाते हैं। यदि हम अपने संबंधों में प्रेम, विश्वास, सम्मान और संवाद को बनाए रखें, तो जीवन सहज, संतुलित और आनंदमय बन सकता है। आइए हम संकल्प लें कि अपने संबंधों को समय देंगे, उन्हें समझेंगे और सहेज कर रखेंगे। इसी सकारात्मक विचार के साथ आज के चिंतन को यहीं विराम देते हैं।
0: ये था आज का चिंतन। आइए अब सुने खेती की बातें, विषय है बीज उपचार। हमें जानकारी दे रही हैं भारती उपाध्याय।
2: किसान भैयों के राम राम। किसान भैयों, खेती की बात में आज अपन बात करांगा कि अपना जो किसान भैयों ने उन्होंने अगली बुवाई सारू खेत की तैयारी तो करी ने रखी होगी, साथ साथ खेत की

0: तैयारी का साथ साथ अपना किसान भाइयों उनके चाहिए कि वो बीज उपचार भी अच्छी तरह से करी लेवे। बीज उपचार अगर सही ढंग से करियो जावे वो तो अच्छी फसल अच्छी उपज अपना किसान भाइयों ले सकेगा। बीज उपचार को सबसे सही वैज्ञानिक तरीको यही है कि हमेशा FIR मतलब अपन क्रम को पालन करा, जैसे कि पहला कि फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक और ओका बाद फिर राइजोबियम में ओके डुबावा। ओका से कहीं होवेगो कि है नहीं अपना जो बीज है वे रोग होने से मुक्त हो जाएगा, जैसे दीमक और शुरुआत में जो कीट होन होवे नहीं ओका से अपना जो बीज है वे बची सकेगा। अगर अपना किसान भाई होन राजा रासायनिक विधि को उपयोग करना चाहे तो इस तरीका से करें, जैसे कि पहला मात्रा तय करी लेवे कि अनुशंसित फफूंदनाशक जैसे कि कार्बेडाजिम या साफ 2 से 2.5 ग्राम और कीटनाशक 3 से 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज का हिसाब से उनके लेनो है। और ये दो ही चीज़ लेने का बाद उनको घोल बनानो है। तो घोल कैसे बनानो है कि दवा के सीधे बीज में नहीं डालनो है, पहला कहीं करना है 1 किलो बीज सारू लगभग 10 से 15 मिलीलीटर पानी में दवा को घोल बने ने रखना है। पहला अपन कहीं करांगा कि पहला घोल बनावांगा, जैसे अपना 1 किलो बीज है तो उका सारू अपन 10 से 15 मिलीलीटर पानी में दवा को घोल बने ने रखी लेवांगा। फिर उका बात कई करना है कि मिश्रण की प्रक्रिया करनी है, जमीन पे साफ प्लास्टिक या तिरपाल जो आवे नहीं वह बिछाई देनी है, या तो प्लास्टिक पूरे जमीन पे अच्छे से बिछाई दो या फिर वो अपने जो तिरपाल है उखे अच्छी तरह से बिछाई दो। फिर बीज के ओका ऊपर फैलानो है, तो जो भी अपना बीज है ओके उन्हें तिरपाल या प्लास्टिक पे अच्छी तरह से फैलाई देवा। दवा का घोल के हाथ से या तो हाथ में दस्ताना पहनी लेवा और पहनकर बीज का ऊपर अपना के छिड़कना है। अपन ने जो ये घोल बने ने रखे हुए नहीं इन्हें घोल के अपन ने प्लास्टिक की तिरपाल पे अपना सारा बीज फैलाई दिया और उन सब बीजों का ऊपर उन्हें दस्ताना पहनी ने और हाथ से उन्हें बीज उन पर छिड़कना है। और फिर जब वो छिड़की जावे सब बीज उन पे अपन ने वो घोल छिड़के दियो, फिर अपना के बीज के दोनों हाथ से तब तक रगड़नो है जब तक कि हर बीज पे दवा एक समान परत पे चढ़ी नहीं जावे। मतलब अपन ने पूरा बीज उन के दवाई छिटकने का बाद अपन ने बीज उनके वहाँ से जैसे कि आखिरी से अपन ने शुरू करियो तो वहाँ से शुरू करी के इधर से वापस से अपन आखिरी तक आवा और हर बीज उनके अच्छे से रगड़ी लेवा ताकि सारा बीज उनमें या दवा जो है समान रूप से चढ़ी जावे। जिका से कहीं होगा कि असो नहीं रहेगा कि बीज उन छूटी गया है किसी में दवा ना की है किसी में नहीं ना की है, तो एकासे समान रूप से सारी अपना जो बीज है उनमें दवा ना की जावेगी। फिर ओका बाद इन्हीं बात को ध्यान रखना है कि अपन ने ये बीज उनके उपचारित तो कर ही लिया, ओका बाद कभी भी इन बीजों के अपना खे धूप में नहीं सुखानो है, बल्कि अपना खे कई करनो है 15 से 30 मिनट तक छाया में ही सुखाने एक ही बुआई करनी है, मतलब बीज के अपना खे छाया में सुखाना है। यदि तम जैविक तरीका से या रासायनिक दवाओं से बीज के बनानो चाहो बीज के उपचारित करना चाहो तो तम बीजामृत को उपयोग कर सकता हो, टाइकोडर्मा को भी उपयोग करी सका हो। जैसे बीजामृत को उपयोग करना है तो ओका सारू अपना खे 1 किलो बीज सारू 50 ग्राम गाय को गोबर, 50 मिलीलीटर गोमूत्र, 50 मिलीलीटर दूध और 2 से 3 ग्राम चूनो उखे 1 लीटर पानी में घोल बने इन्हें रात भर रखना है और सुबह बीज के इना घोल में डुबोना है और छाया में सुखाना है। तो यो बीजामृत से अपना जो बीज है वे उपचारित हो जाएगा। तो किसान भाई उनके आज इतना ही कहना थो, राम राम।
1: अभी आपने सुना खेती की बातें, विषय था बीज उपचार, हमें जानकारी दे रही थी भारती उपाध्याय। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

पार्वती से विवाह करने की भगवान शिव की सहमति पाकर देवगण पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे। महादेव के प्रताप का प्रभाव विचार कर अति प्रफुल्लित मन से उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला भेजा और शुभ दिन, नक्षत्र तथा शुभ घड़ी आदि विचार कर विवाह लग्न निश्चित करने की विनती की। लग्न पत्रिका तैयार हुई तो उसे सप्त ऋषियों के हाथ ब्रह्मा को भिजवाई, जिसे पढ़कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर शिव की बारात में जाने के लिए देवतागण अपने भांति भांति के विमान सजाने लगे। शिवजी के सेवकों ने स्वामी का श्रृंगार करना आरंभ किया। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर चढ़ाया गया। सांपों के ही कुंडल और कंकण, शरीर पर विभूति का लेप और वस्त्र के नाम पर व्याघ्र चर्म, सुंदर भाल पर चंद्रमा सुशोभित हुए, सिर पर गंगावतरण, तीन नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, गले में विष तथा छाती पर नरमुंडों की माला, ऐसा भयावह और अशुभ दिखने वाला वेश था मंगलकारी महादेव का।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें।

आज सवेरे 7:20 पर सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सुनहरे पल। सवेरे 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कलाबाई खरलवा और साथियों के गाए लोक गीतों का आनंद लीजिएगा लोक संगीत में सवेरे 9:00। सुगम संगीत आप सुनेंगे आज सवेरे 9:15 पर और शाम 6:30 पर। कलाकार होंगे जगजीत सिंह।

सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा पंडित उमा शंकर मिश्र का सितार पर बजाया राग तोड़ी। सुबह 10 बजे रिले करेंगे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, और सुबह 10:05 से जुड़िएगा हमारे साथ हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में। इस कार्यक्रम में आप हमें फ़ोन करके अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। दिन में 1 बजे आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम। और आइए श्रोताओं, अब आपको उन कार्यक्रमों की जानकारी दे दें जो हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 11 बजे आप सुनेंगे फ़ोन इन कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुने। फिल्म संगीत दोपहर 12 बजे और 2:30 पर। 12:30 पर होगा कार्यक्रम संग्रहालय से। लोक संगीत आप सुनेंगे दिन में 1 बजे और सुगम संगीत 1:45 पर। लोक संगीत आप सुनेंगे दिन में 1:30 पर और सुगम संगीत दिन में 1:45 पर। हमारी शाम की सभा की शुरुआत होगी कार्यक्रम युववाणी से शाम 5 बजे। आज के आकर्षण हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। 5:45 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। शाम 6 बजे होगा हमारा विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला व्यापार और उद्योग केंद्र इंदौर के महाप्रबंधक स्वप्निल गर्ग से शिखा साहू की बातचीत आपको सुनाई जाएगी। मधुसूदन भाटिया और साथियों के गाय लोकगीत सुनिएगा लोक संगीत में आज शाम 6:45 पर। शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में फसल बीमा योजना के साथ ही आप सुन सकते हैं धन्नालाल चौधरी का कविता पाठ और कुछ लोकगीत। रात्रि 8 बजे हम रिले करेंगे न्यूज रील सुर्खियों में हमारे भोपाल केंद्र से। 8:15 पर सुनना ना भूलें कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत प्रसारित होगा रात्रि 9:15 पर और 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दिल्ली केंद्र से ही हम अनुप्रसारित करेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। समय रहेगा रात्रि 10 बजे। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के दो विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। एफआईएच पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
3: युवाओं के जोश, उमंग और

0: ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर। गृह मंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित सेवा भारत टैक्सी का गुजरात में करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आतिथ्य में होगा विशेष कार्यक्रम। और आज भोपाल, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा दल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ बातचीत करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वे वहां भारत वंशियों से भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर इसका सीधा प्रसारण होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश को नशे के खतरे से बचाने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल का भी शुभारंभ किया। संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश नशे के खिलाफ लड़ाई के बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: समान नागरिक संहिता यूजीसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्ययन और परीक्षण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में हुई। समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधेयक के प्रारूप के साथ ही विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति समेत अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति सदस्य सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि समिति की रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में है। समिति की रिपोर्ट के 2 भाग होंगे, जिसमें पहला भाग समिति के अनुशंसाओं का और दूसरा भाग समिति द्वारा किए गए जन परामर्शों से संबंधित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज शाम को सनसेट पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में शामिल होंगे। वे गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अगले दिन सुबह 6:30 पर सनराइज और बुज पॉइंट पर मेडिटेशन करेंगे। फिर स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन भी करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन

0: यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की प्रदेशवासियों सहित उद्यमियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। श्री कश्यप ने कहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे अभिनव आयोजनों ने प्रदेश में एमएसएमई स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ा है, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल लोकतंत्र सेनानी स्मृति दिवस के अवसर पर रविन्द्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकार स्पेशल ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराएगी, साथ ही लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी।
2: लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। हमारे लोकतंत्र सेनानी अपने राज्य के अंदर कई जगह छोटे छोटे स्थान पर भी रहते हैं और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहाँ राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी।
1: प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में एंट्री करने के बाद मॉनसून ठहर गया। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक मॉनसून आगे बढ़ा तो पहले ये भोपाल उज्जैन संभाग में पहुंचेगा, आखिर में ग्वालियर चंबल में दस्तक देगा। प्रदेश में मॉनसून 24 जून को पहुंचा था। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन रही है। इसके असर से आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारे शिकस्त दी। लंदन के ली वैली हॉकी सेंटर में खेले गए मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, चुकराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समय स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे की भोपाल मंडल के रुठियाई, गुना, पीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। खंडवा में साइबर अपराधों से बचाव के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.2 अभियान लगातार जारी है। अभियान के तीसरे दिन विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा कलेक्टर के आदेश पर 24 घंटे संचालित होने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण स्थापित किया गया है। सतना जिले में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कई जगह नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निंडौरी में कल से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिले के 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इंदौर में मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल वृत्त इंदौर ने कॉलोनियों के निवासियों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। गुना में कल राजस्व और नगर परिषद के संयुक्त अमले द्वारा संचालित कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में अनारकली फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत सी रामचंद्र का।

श्रोता हूँ, अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की ही आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, जिसकी धुन बनाई है हेमंत कुमार ने। फिल्म का नाम है नागिन।

श्रोताओं, अब सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत फिल्म चोरी चोरी से।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में शैलेंद्र का लिखा ये गीत, जिसकी धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है बरसात।

श्रोताओं अब सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा ये गीत आवारा फिल्म से।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र का लिखा ये गीत, जिसकी धुन बनाई है सलील चौधरी ने। इसे हमने लिया है फिल्म परख से।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गवार फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

और अब इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति बरसात की रात। इस फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आनंद बख्शी की रचना, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: ये थी सुनहरे पल कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए इजाजत रूपाली चौहान को, नमस्कार।
1: सुनहरे पल,
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता

0: जी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्ध में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉ मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है, लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ 2 कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1

0: और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और केबो वर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टिपत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, two times champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as a guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
4: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
3: Union Home and Corporation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in the program.
5: Developed by Sahakar Taxi Cooperative Limited with the support of 8 major cooperative institutions including Amul, IFFCO and NABARD, Bharat Taxi operates on a zero commission model to pass the maximum financial benefits directly to drivers. Since its soft launch in December last year, this platform has registered over 1.5 lakh drivers and 7 lakh customers in Gujarat alone, completing more than 3,500 rides daily. The service will initially be launched across 14 major cities in Gujarat, including Ahmedabad, Surat and Vadodara, with a target to cover the entire state within a month. Aparna Khun, Akashwani News, Gandhinagar.
3: Secretary, Department of Atomic Energy, Ajit Kumar Mohanty has inaugurated the world's first hydrogen production facility based on the copper-chlorine thermochemical cycle utilizing nuclear process heat generated from the fast breeder test reactor at the Indira Gandhi Center for Atomic Research, IGCAR, Kalpakkam. Addressing the gathering, Dr. Mohanty said that the integration of nuclear energy with emerging clean energy technologies such as hydrogen production represents a strategic pathway towards a sustainable energy future. We have a report.
6: Dr. Mohanty said that nuclear power with its unique ability to provide reliable carbon-free electricity is ideally suited to support large-scale hydrogen production while contributing to India's energy security, decarbonization goals and long-term sustainable development objectives. The facility has been established as a technology demonstrator to validate the production of hydrogen using nuclear energy through the thermochemical process developed indigenously by Bhabha Atomic Research Center, Mumbai. Department of Atomic Energy said that the commission of the facility represents the culmination of extensive research, process development, engineering design, equipment fabrication, installation, testing and commissioning efforts undertaken jointly by BARC and IGCR. Shivamishra, Akashwani News, Delhi.
3: Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan will chair the National Rural Development Conference 2026 to begin in New Delhi tomorrow. The two-day conference will bring together rural development ministers, senior government officials and experts from all states and union territories to deliberate on holistic rural development, review key flagship programs and formulate the future roadmap for rural India. Under the leadership of Union Minister Shivraj Singh Chauhan, this will be the first large-scale national rural development conference of its kind. Jammu and Kashmir police have launched Project Hawkeye, a technology-driven surveillance initiative for round-the-clock monitoring of the Amarnath Yatra route as security agencies intensified preparations for the

एक नाम है सैक्सोफोन। 19वीं शताब्दी में बेल्जियम के वाद्य निर्माता एडोल्फ सैक्स द्वारा विकसित यह वाद्य मूलतः पश्चिमी संगीत का हिस्सा रहा, लेकिन भारतीय फिल्म संगीतकारों ने इसकी मधुर, गहरी और भावपूर्ण ध्वनि को अपने संगीत में इस तरह आत्मसात किया कि अनेक फिल्मी गीतों की पहचान ही इसकी तानों से बन गई। कभी प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति, कभी विरह की टीस, कभी रात की खामोशी और कभी जीवन का उल्लास, सैक्सोफोन ने हर भावना को अपनी विशिष्ट ध्वनि से और भी प्रभावशाली बनाया है। आज के इस विशेष अंक में हम सुनेंगे हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर के कुछ ऐसे ही कालजयी गीत जिनमें सैक्सोफोन का सुंदर और प्रभावी प्रयोग सुनाई देता है। तो कार्यक्रम का पहला गीत है 1960 में प्रदर्शित फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। निर्देशक किशोर साहू की इस फिल्म में मीना कुमारी, राजकुमार, नादिरा और ओम प्रकाश ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म अपने सशक्त कथानक और उत्कृष्ट संगीत के कारण आज भी याद की जाती है। गीत अजीब दास्तां है ये, इसके बोल लिखे थे हिंदी फिल्म जगत के महान गीतकार शैलेंद्र ने। संगीत दिया था सदाबहार जोड़ी शंकर जयकिशन ने और अपनी भावपूर्ण आवाज से इसे अमर बनाया स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। इस गीत का संगीत संयोजन अत्यंत संतुलित और संवेदनशील है। प्रस्तावना और मध्यांतरों में सुनाई देने वाली सैक्सोफोन की मधुर तान गीत के भावों को और अधिक गहराई प्रदान करती है। यही कारण है कि ये गीत 6 दशकों से भी अधिक समय बाद भी आज भी श्रोताओं के हृदय में उसी आत्मीयता के साथ जीवित है। एक रोचक तथ्य ये भी है कि इस गीत को आज भी भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और भाव प्रधान गीतों में गिना जाता है। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अब बढ़ते हैं वर्ष 1952 की फिल्म जाल की ओर। निर्देशक गुरुदत्त की इस फिल्म में देव आनंद और गीता बाली मुख्य भूमिकाओं में थे। गीत ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, इसे लिखा था महान शायर साहिर लुधियानवी ने। संगीतकार थे सचिन देव बर्मन, जिन्हें हम प्रेम से एस डी बर्मन के नाम से जानते हैं। अपनी मखमली आवाज से इस गीत को अमर बनाया हेमंत कुमार ने। इस गीत की सबसे बड़ी विशेषता इसका शांत, गंभीर और अत्यंत भावपूर्ण संगीत संयोजन है। सैक्सोफोन की कोमल धुन रात के शांत वातावरण को मानो सजीव कर देती है। पश्चिमी वाद्य यंत्रों का प्रयोग होने के बावजूद इस गीत की आत्मा पूरी तरह भारतीय भावभूमि से जुड़ी हुई है। संगीत प्रेमियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है।

अब प्रस्तुत है साल 1955 की अमर फिल्म श्री 420 का एक ऐसा गीत जो प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की इस कालजयी फिल्म में उनके साथ थी नरगिस। वर्षा की फुहारों के बीच फिल्माया गया ये दृश्य भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार दृश्यों में गिना जाता है, और आज भी जब कभी बारिश होती है तो हम सभी संगीत प्रेमियों के दिलों में ये गीत कौंध जाता है। प्यार हुआ इकरार हुआ, इस गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने, संगीत दिया था हिंदी फिल्म संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय जोड़ी शंकर जयकिशन ने। इस गीत को अपनी मधुर आवाजों से सजाया था लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। गीत के संगीत संयोजन में सैक्सोफोन का अत्यंत सुरुचिपूर्ण प्रयोग किया गया है। इसकी मधुरता ने गीत के रोमांटिक वातावरण को और भी प्रभावशाली बना देती हैं। यही कारण है कि 7 दशक बाद भी ये गीत उतना ही ताज़ा और लोकप्रिय प्रतीत होता है जैसे पहले था। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों कार्यक्रम में अब सुनते हैं वर्ष 1969 की सुपरहिट फिल्म आराधना का एक यादगार गीत। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गीत हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। इसे लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत दिया सचिन देव बर्मन ने और अपनी सुमधुर आवाज से इसे अमर बनाया किशोर कुमार ने। इस गीत की एक विशेष पहचान इसका प्रभावशाली संगीत संयोजन है। सैक्सोफोन की आकर्षक धुने गीत में रोमांच, प्रेम और आत्मीयता का अनूठा वातावरण रचती है। यही कारण है कि ये गीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।

कार्यक्रम के अंतिम गीत के रूप में प्रस्तुत है साल 1966 की लोकप्रिय फिल्म तीसरी मंजिल का जोशीला और सदाबहार गीत। निर्देशक विजय आनंद की इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे शम्मी कपूर और आशा पारेख, जबकि इस गीत के नृत्य दृश्य में हेलेन की प्रस्तुति ने इसे और भी यादगार बना दिया है। गीत के बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया राहुल देव बर्मन यानी पंचमदा ने और स्वर दिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। आर डी बर्मन ने इस गीत में पश्चिमी संगीत शैली और आधुनिक वाद्य यंत्रों का बहुत ही प्रभावी प्रयोग किया है। सैक्सोफोन की ऊर्जावान धुनें इस गीत में एक अलग ही आकर्षण भर देती हैं और यही इसकी स्थायी लोकप्रियता का महत्वपूर्ण कारण भी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने कुछ ऐसे ही कालजयी गीतों का आनंद लिया जिनमें सैक्सोफोन की मधुर और प्रभावशाली ध्वनि ने सुरों को एक नया आयाम दिया था। इन गीतों ने ये सिद्ध किया कि जब श्रेष्ठ गीतकारों की लेखनी, महान संगीतकारों की कल्पनाशीलता और विलक्षण गायकों की स्वर साधना एक साथ आती हैं, तो संगीत समय की सीमाओं से परे जाकर अमर हो जाता है। आशा है कि ये सुरमई यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगली भेंट में फिर किसी नए विषय, नई धुनों और नई स्मृतियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत रूपाली चौहान को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है लोक संगीत। आज आप सुनेंगे कलाबाई खरलवा और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये पारंपरिक गणेश वंदना।

और अब लोक संगीत की अंतिम प्रस्तुति कलाबाई खरलवा और साथियों की आवाज़ों में माँ क्षिप्रा की वंदना करता ये लोकगीत।

अभी आपने सुने कलाबाई खरलवा और साथियों की आवाज़ों में मालवी लोकगीत। लोक संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आपको सुनवा रहे हैं ये कृष्ण भजन जगजीत सिंह के स्वर में है।

अभी आपने सुने जगजीत सिंह के स्वर में कुछ मधुर भजन। सुगम संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित उमाशंकर मिश्र का सितार वादन। राग है तोड़ी।

अभी आपने सुना पंडित उमा शंकर मिश्र का सितार वादन, राग था तोड़ी। शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, लीजिए प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। आगामी वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने बाढ़, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गत दिनों हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा है कि आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग अपनी कार्ययोजना तैयार रखें और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर्व पर आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण और सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा और आयुष विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। इस दौरान मोती सागर तालाब में साफ सफाई कार्य किया गया। वहीं जन अभियान परिषद द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों और गाँवों में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को लेकर जल स्रोत पूजन, गंगा कलश यात्राएं, सामूहिक श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियों से ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा जिला अस्पताल में स्थापित तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने, आमजनों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता UCC के संबंध में अध्ययन और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की पिछले दिनों आगरमालवा स्थित कंपनी गार्डन के नवीन मांगलिक भवन में समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा की उपस्थिति में जन परामर्श बैठक हुई। इसमें जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और अन्य वर्ग

समूह के लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और सुझाव पेश किए। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत आगरमालवा स्थित पुराने कृषि उपज मंडी में प्राकृतिक खेती संवर्धन और खेत बचाओ अभियान के तहत पिछले दिनों आयोजित हुए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि वर्तमान समय में धरती माता और मानव स्वास्थ्य दोनों को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आगरमालवा नगरीय क्षेत्र के पात्र 243 हितग्राहियों को पिछले दिनों विधायक मधु गहलोत ने स्वीकृति पत्र सौंपे। गौरतलब है कि पहली किश्त के रूप में 1-1 लाख रुपए के मान से 2,47,00,000 रुपए सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हर घर जल बेहतर जल के तहत पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के नलखेला नगर में 11 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक भैरव सिंह परिहार ने किया। योजना के अंतर्गत कुंडालिया बांध से फिल्टर प्लांट तक 16 किलोमीटर रॉ वाटर पाइपलाइन, विभिन्न स्थानों पर उच्च क्षमता की पानी की टंकियों का निर्माण, पाइपलाइन विस्तारीकरण, नल कनेक्शन और फ्लोटिंग इंटरक्वेल सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। आगरमालवा जिला पंचायत सभागृह में गत दिनों हुई पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में सीईओ बी एस सोलंकी ने कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, क्षीरधारा, ग्राम योजना, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, मैत्री योजना, गौशाला संचालन और गौरस ऐप के उपयोग और प्रगति की जानकारी ली। जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन के लिए पुजारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच और पात्रता परीक्षण प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने टीम गठित की है। जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्य प्रजनन काल होने से कलेक्टर ने जिले के जलाशयों में मत्स्य खेत पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। नियमों के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी आवश्यक पात्र हितग्राहियों का ई केवाईसी निर्धारित समय सीमा 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए ताकि योजना के आगामी किश्तों का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। वृद्धजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीते दिनों वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में द्वितीय जिला न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल ने वृद्धजन के खान पान स्वास्थ्य से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना और वरिष्ठ नागरिकों माता पिता के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों की जानकारी दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे आगर मालवा जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में आप कॉल करके अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो श्रोताओं, हमें इंतज़ार है आपके कॉल्स का।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रूपाली चौहान। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और पहला गीत कार्यक्रम का हम आपको सुनवा रहे हैं बरसात फिल्म से। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: श्रोताओं, आइए देखते हैं हमसे जुड़ने वाले हमारे पहले कॉलर कौन हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, हमारी बात किन से हो रही है?
1: प्रकाश।
0: प्रकाश जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: धार से।
0: धार से बोल रहे हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: वो गीत गाता चल टाइटल साउंड है।
0: गीत गाता चल फिल्म का टाइटल सॉन्ग। ठीक है, आपकी पसंद का गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। प्रकाश जी, पहले मुझे बताइए आप क्या करते हैं?
1: हमारी चाय की दुकान है।
0: अच्छा, तो इस मौसम में तो आपका चाय का जो कारोबार है और भी बढ़ जाता होगा।
1: बारिश में और ठंड में ज़्यादा चलता है, गर्मी में कम चलता है।
0: अच्छा, तो चाय के अलग अलग फ्लेवर हैं आपके पास या जो रोज़ हमेशा चलती है वही वाली चाय?
1: रेगुलर चलती है वही है चाय, काफ़ी बस दो ही।
0: अच्छा, नहीं जैसे बारिश के दिनों में लोग डिमांड करते हैं कि अदरक वाली चाय हो या कोई और?
1: अदरक और इलायची चलती है और मसाला चलता है बस।
0: अच्छा जी, और इस गीत को पसंद करने के पीछे कोई खास वजह है?
1: क्योंकि अभी पानी का मौसम भी चल रहा है और इस गाने में पूरा पानी का भी दे रखा उसमें साउंड।
0: अच्छा, इसलिए आपको ये गीत पसंद?
1: और पानी अमृत, पानी तो अमृत होता है, इसलिए अभी पानी की जो जरूरत है उसके लिए ही वो है।
0: जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, पानी जो है हमारे लिए अमृत के समान है और इसलिए हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। और पानी
1: एक एक बूंद इसमें पानी की जो दे रखी है
0: जी,
1: वो चांदी के समान है, उसमें गाने में पूरा दे रखा है इसलिए।
0: जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सोच के साथ इस गीत को पसंद किया है और आपकी ये बात हमें और हमारे साथ सभी श्रोताओं को भी बहुत पसंद आई होगी। तो लीजिए आपकी फरमाइश पर सुनिए गीत गाता चल फिल्म का ये गीत, और कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, गीत में जो लाइनें थी कि पानी के बिना तो किसी का काम ना चले, बिल्कुल बहुत ही सही बात है और हमारे श्रोता ने बहुत प्यारा गीत पसंद किया था। वाकई में हमें पानी की हर एक बूंद को बचाना चाहिए और इस बारिश के मौसम में जो गिरने वाला पानी है उसकी हर बूंद को सहेजने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि कार्यक्रम में हमसे जुड़ने वाले हमारे अगले श्रोता कौन हैं। हेलो हेलो
1: गुड मॉर्निंग मैम। हेलो गुड मॉर्निंग
0: मैम। हेलो
1: हेलो मैम, आपकी आवाज आ रही है।
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, मैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से मैम।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रहे हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैम ठीक है मैम, आप बताइए कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मुझे बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम फिल्म 20 साल बाद से है, कितने सावन बरस गए।
0: 20 साल बाद फिल्म से? अच्छा
1: हाँ जी,
0: चूंकि अभी तो ये आषाढ़ का महीना चल रहा है, इसके बाद श्रावण लगेगा
1: जी।
0: इस बार दो आषाढ़ थे और कहते हैं कि जब एक महीना बढ़ जाता है तो ये जो महीना होता है इसमें हमें धर्म कर्म और ऐसे बहुत सारे काम करना चाहिए तो उसका हमें दुगना फल मिलता है। ये जो दो आषाढ़ थे उसमें आपने कुछ इस तरह के कार्य किए क्या?
1: हाँ मैम, हमने मैम मतलब यहाँ पे जब मतलब भंडारे किए थे अपने मतलब ऑफिस के बाहर
0: जी,
1: उसमें जो ठंडा पानी पिलाया गया सबको और मतलब खाना पूरी भी दिया गया था।
0: हाँ हाँ
1: हाँ जी मैम,
0: बहुत इस बार तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि लोगों को पानी के लिए लोग बहुत तरस गए थे।
1: हाँ जी मैम
0: जी,
1: अभी मैम जो मतलब कल पर जो ना ग्यारह थी ना, ग्यारह को थी मतलब हमें जो पानी पिलाया था।
0: हाँ हाँ, अभी उस तरफ बारिश के क्या आसर हैं? बारिश शुरू हो गई है?
1: नहीं मैम, बहुत तेज धूप है मैम।
0: अच्छा अच्छा,
1: कोई आता नहीं आसपास, कोई मतलब उम्मीद नहीं लग रही अभी तो।
0: ठीक है ठीक है, लीजिए हमने आपकी पसंद का ये गीत निकाल लिया है और सुनिए आपकी पसंद का ये गीत 20 साल बाद फिल्म से। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद।

0: आइए देखते हैं कार्यक्रम में हमसे जुड़ने वाले अगले श्रोता कौन हैं। हेलो हेलो
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: एमएच हॉटलाइन जी हाँ नमस्कार, किन से बात हो रही है हमारी?
1: गुमास्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कौचाले।
0: अच्छा अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपके बहुत सारे खत हम शामिल करते हैं अपने कार्यक्रमों में और हम आप हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: जी जी बिल्कुल। और मैडम सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपका पत्र, हमें लगातार पत्र भेजे हैं लेकिन आज तक एक बार भी हमारा पत्र शामिल नहीं हुआ है
0: आपका पत्र में।
1: हाँ, मतलब स्पीड पोस्ट से हम भेजते हैं 22 रुपए के खल

0: पत्र भी आता है उसको भेजने के लिए, 5-6 पत्र भेजे, लेकिन तृप्ति मैडम ने एक भी पत्र हमारा जानबूझकर शामिल नहीं किया है।
1: नहीं नहीं, देखिए जानबूझकर तो ऐसा कोई भी नहीं करता है, हो सकता है किसी कारणवश पत्र शामिल नहीं हुआ हो। आप इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ईमेल भी हमें भेज सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान ईमेल का एड्रेस भी आपको बताया जाता है और फ़ोन नंबर भी राजेश सर द्वारा आपको बताए जाते हैं।
0: हाँ।
1: जी अभी तो आप बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे।
0: हाँ, और अभी क्या है कि आज हम, आपको पता ही, हम बैंक में नौकरी करते हैं और आज बैंक की छुट्टी है तो घर पर ही है और घर से ही बात कर रहे हैं। नहीं तो हमेशा आपको बोलते कि हम बैंक से बोल रहे हैं, लेकिन आज हम ये बोलते कि हम घर से बात कर रहे हैं।
1: ठीक है, आप गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: का नाम है नागिन, आवाजें है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। ये हम लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज में सुनवा दीजिए। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, 1976 की फिल्म है नागिन।
1: अच्छा, ये गीत तो बहुत फेमस हुआ था, बहुत लोकप्रिय हुआ था। जी,
0: और हर लड़की हर महिला नागिन बनने की सोच रही थी।
1: देखिए ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ ये फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई थी और मेरे ख्याल से आपने भी देखी होगी ये फिल्म।
0: नहीं, ये फिल्म आई थी, हम बहुत बच्चे थे उस समय, हमने नहीं देखी थी। अच्छा। और उस समय ऐसा कि भाई माता पिता है अगर फिल्म देखने जाए तो ही बच्चे ले जा पाते थे, अब का जमाना अलग है, उस समय का जमाना भी अलग था।
1: हाँ, और देखिए अनिल जी उस वक्त फिल्में भी ऐसी आती थी, पारिवारिक फिल्में आती थी जो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते थे और हर फिल्म में कोई ना कोई संदेश होता था, पुरानी फिल्मों की एक ये खासियत होती थी।
0: ये बात भी सही
1: और
0: है।
1: गीत भी इतने कर्णप्रिय होते थे कि आप अगर आज के जमाने में भी वो गीत सुने तो आपको वो उतने ही पसंद आएंगे।
0: जी जी, जब भी तो इतने 50 साल पुराने फिल्म है, लेकिन फिर भी हमने उसी गीत की फरमाइश की और करीब करीब लोग उसी दौर के गीत सुनना चाहते हैं क्या?
1: जी बिल्कुल,
0: पास फोन आते हैं, पत्र आते हैं, करीब करीब उन्हीं मतलब पुरानी से पुरानी फिल्मों के ही गीत की फरमाइश करते हैं। वो एक दौर ही, एक स्वर्णिम दौर था, इसको बोलना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, और आपने जो गीत पसंद किया है वो भी बहुत अच्छा है, तो लीजिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का नागिन फिल्म का ये गीत। और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप रूपाली मैडम है ना?
1: जी जी बिल्कुल,
0: हम आए थे आपसे मिलने, दो बार आपसे मुलाकात भी हुई थी।
1: चलिए अनिल जी लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आइए देखते हैं कार्यक्रम में हमसे जुड़ने वाले अगले श्रोता कौन हैं। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: अच्छा रानू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कैसी हैं आप?
1: ठीक है, मैं ठीक हूँ, और आपके क्या हाल चाल?
0: हाँ जी, हम भी बहुत बढ़िया हैं। हमारे श्रोताओं से इस तरह से हमारी मुलाकात होती है तो बड़ा अच्छा लगता है
1: जी।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मूवी का नाम है कुछ दिल ने कहा, और गाने के बोले मेरी नींद चुरा ले।
0: अच्छा,
1: बहुत दिन से ये सॉन्ग सुना नहीं तो मैंने सोचा सुन ही लेती हूँ।
0: अच्छा, वैसे जब हमारी पसंद के गीत किसी और के द्वारा हमें सुनने को मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, जब रेडियो पे एकदम से हमारी पसंद का कोई गीत आ जाता है।
1: और डेडिकेशन आपको रहेगा और मेरी बहन नंदनी को रहेगा।
0: अरे क्या बात है,
1: बाकी जो तमाम श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, अभी उससे पहले जो कॉलर जुड़े थे वो बोल रहे थे हर लड़की नागिन बन रही है, तो ऐसा नहीं है, पांच उंगली बराबर नहीं होती।
0: हाँ देखिए रानू जी, ये तो अपनी अपनी सोच होती है, हो सकता है।
1: बाकी थोड़ी सी हंसी तो मुझे भी आई थी जमाने को देख के, उन्होंने बोला तो सही है, बस पांच उंगली बराबर नहीं रहती है।
0: चलिए, दिन भर में अच्छा है ना, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि किसी के कहने से हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है।
1: जी।
0: और हमें भी दूसरी बातों को भूलते हुए हमेशा मुस्कुराना चाहिए।
1: मुझे बुरा कोई नहीं लगा, बल्कि मुझे तो हंसी आई, मतलब।
0: रानू जी, बारिश के क्या हाल चाल है अभी?
1: बारिश कल मैम मेरे यहाँ कंटिन्यू 2-3 घंटे बारिश हुई।
0: अच्छा
1: हाँ, अच्छी खासी हो गई। और आज मतलब जो कहते हैं ना खेतों में, मतलब
0: हरियाली छा जाती है,
1: मतलब
0: जी
1: हाँ, तो वो शुरुआत हो गई है।
0: अच्छा,
1: और क्योंकि मेरे यहाँ हार्डवेयर किराने की शॉप है ना, तो जैसे कि खेती बाड़ी से रिलेटेड आइटम भी बिकते हैं, तो मुझे इसलिए पता रहता है, मतलब ऐसा।
0: अच्छा, और हाँ। बारिश से जुड़ा कोई ऐसा यादगार किस्सा है जो आपको याद हो, बचपन का या कभी का भी?
1: बचपन का नहीं है, बट मेरे कॉलेज टाइम का है, सुना दूं क्या?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: वो हुआ कुछ, मैं मतलब गुना में है मेरा मायका।
0: हाँ।
1: तो मैं ना एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो कॉलेज से आ रही थी पैदल, बारिश ज्यादा थी तो मम्मी ने बोला कि पैदल ही जाना, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं पैदल पैदल आ रही थी, छुट्टी हुई, तो अब क्या हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुई और मुझे मजा आ रहा था, पानी बहुत ज्यादा बह रहा था। फिर क्या हुआ, एक लड़का आ रहा था, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपको छोड़ दूं क्या? तो मैंने बोला जी जी आप मुझे छोड़ दीजिए, मतलब आजकल थोड़ा सा डर लगता है, बट पहले ऐसा हाँ। नहीं था, करीबन 5-10 साल पहले। फिर उसके बाद मैंने मेरे उनको घर तक ले गई, मेरी मम्मी को भी बताया कि इन्होंने मेरे को छोड़ा, ठीक है।
0: अच्छा।
1: बट उसके बाद से ये कंडीशन हुई, वो बंदा मेरे को छावी मिलता था ना, मैं बात नहीं करती, मैं उसकी बाइक सुधारने लगता था।
0: हो सकता है आपके बैठने से उनकी बाइक पंचर हो गई हो।
1: मतलब मैं मेरी मम्मी को भी बोलती थी, मेरे भाई को, लगभग सभी को पता चल गया था कि ये देखता है इसको हमेशा बाइक सुधारने लगता है।
0: चलिए रानू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये प्यारी प्यारी बातें करके, और लीजिए अब सुनिए आपकी पसंद का ये गीत, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं आइए देखते हैं हमसे जुड़ने वाले हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में योगेश जी।
1: शुक्रिया।
0: आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म सावन को आने दो का टाइटल सॉन्ग।
0: अच्छा जी, सावन को आने दो। जी हाँ, सावन तो आने ही वाला है अब आषाढ़ के बाद।
1: अभी भीषण गर्मी है और इस बार मानसून काफी ज्यादा लेट हो गया है।
0: हाँ जी,
1: तो काफी चिंताएं भी बढ़ गई हैं क्योंकि खेतीबाड़ी का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, इधर इंदौर शहर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वैसे तो 15 जून के बाद बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार लगभग जून का महीना ख़त्म होने आया है और पिछले 2-3 दिनों से यहाँ बारिश शुरू हुई है।
1: न्यूज़ में भी देख रहे थे कि पिछले 100 साल 120 साल में ये जून महीना सबसे मतलब गर्म और बिना बारिश का रहा है करके।
0: जी हाँ बिल्कुल, हो सकता है इसका कहीं ना कहीं एक कारण शहरीकरण रहा हो, जब इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इतने सारे कारखाने खुले हुए हैं और सड़कों का इतना निर्माण हो रहा है और घरों में एसी जो चलते हैं उनकी जो गर्म हवा फिर वातावरण में घुलती है तो उससे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
1: पर्यावरण पे हस्तक्षेप करना ये हम लोगों की सबसे बड़ी भूल होती जा रही है।
0: जी बिल्कुल। योगेश जी, आप बताएं बारिश को लेकर आपका कुछ ऐसा यादगार लम्हा हो या कोई एक किस्सा हो।
1: अब बारिश में घूमना फिरना होता है तो काफी मजा आता है।
0: हाँ हाँ,
1: अभी पिछले 2-3 साल से मतलब आसपास ज्यादा लंबे तो नहीं जाते क्योंकि बारिश का समय होता है, लेकिन जो मौसम में हरियाली जो होती है एक मतलब काफी सुहाना पल होता है,
0: खुशनुमा मौसम हो जाता है।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: और प्रकृति की भी एक अलग ही छटा हमें देखने को मिलती है।
1: जी जी जी,
0: सबसे ज्यादा आनंद बारिश के मौसम में ही घूमने में आता है।
1: जी, और वो जो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है ना, तो फिर और एकदम मनोरम हो जाता है।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आजकल के कुछ बच्चों ने तो शायद वो इंद्रधनुष देखा भी नहीं होगा।
1: जी,
0: इंद्रधनुष तो छोड़िए, शायद वो खुला आसमान भी बहुत कम देख पाते होंगे या रात में जो तारे निकलते हैं।
1: जी,
0: और पहले हम कैसे तारों की आकृति को पहचानते थे कि ये काल पुरुष है और ये सप्तऋषि है, इस तरह से ये शुक्र तारा है।
1: जी जी,
0: मुझे नहीं लगता कि आजकल के बहुत से बच्चे ये जानते भी होंगे।
1: छत में चढ़ते हैं ना तो अभी भी बच्चों को बताते हैं उन सब चीजों को।
0: जी तो जी, बिल्कुल, मतलब डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप आजकल के जो बच्चे हैं अपनी गर्दन झुकाए मोबाइल में या फिर अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो आप इनको दूर तक देखने दीजिए, मतलब इन्हें आप खुले आसमान के नीचे ले जाएं और चंद्रमा को दिखाएं, तारों को दिखाएं, ताकि ये बहुत दूर तक की चीज़ों को भी देखें।
1: जी जी जी,
0: हाँ, तो योगेश जी आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और
1: जी, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा, शुक्रिया।
0: आपकी पसंद का ये गीत हाजिर है और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: कौन है? हेलो,
1: नमस्कार पाली जी।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं विवेक बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मऊ से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कार्यक्रम में आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आज मुझे सुनना है आदिल वर्मा साहब का जन्मदिन है।
0: हाँ।
1: तो उनका नाम है भूत बंगला।
0: बिल्कुल,
1: और इसी का मुझे गीत सुनना है। लता जी की आवाज है और गाने के बोल हैं। ओ मेरे प्यार राजा बन के बाहर राजा, ये वाला। और
0: अच्छा।
1: एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा रूपाली जी और सभी श्रोताओं को कि इस फिल्म में आर डी बर्मन, ये फिल्म जो थी वो महमूद साहब की बनाई हुई थी और आर डी बर्मन जी ने इसमें एक रोल भी किया है छोटा सा।
0: अच्छा
1: जी, आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जरूर देखिएगा, फिल्म बहुत अच्छी है।
0: बिल्कुल, आर डी बर्मन साहब जो थे जिनका आज बर्थडे है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और महज 9 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली धुन तैयार कर ली थी
1: जी,
0: और जिसे बाद में फंटूश फिल्म में इस्तेमाल
1: हाँ,
0: किया गया था। जी बिल्कुल, आपको बहुत जानकारी है
1: जी, बचपन से सुन रहे हैं आपको।
0: आज भी जो आपने गीत पसंद किया है वो कुछ हट के है और बहुत कम सुना जाता है।
1: देखिए रूपाली जी, क्या है कि मेरी एक छोटी सी शिकायत भी है, कई बार क्या होता है कि कुछ होता है एक ही गाना पसंद करते हैं
0: जी,
1: क्या तो थोड़ा सा, मतलब मेरा निवेदन ये है कि उनका फोन लगता है तो थोड़ा अलग अलग गाने प्रस्तुत करे, मतलब पसंद करे, ताकि प्रोग्राम में वैरायटी बनी रहे और अच्छा भी लगे सुनने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बहुत सही है।
1: मेरी ये कोशिश रहती है रूपाली जी कि मैं ऐसे गाने चुनूं जो बहुत कम बचते हैं, जैसे उनमें से एक गीत ये भी है
0: जी। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये कहा कि ये गीत बहुत कम सुनने में आता है।
1: आज मैंने ये गीत बोले तो सही गीत में सुना था, तो मैंने सोच के रखा था
0: अच्छा
1: रूपाली जी है, बस भगवान करे मेरा फोन लग जाए और मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई।
0: तो चलिए लीजिए, प्रस्तुत है आपकी पसंद का भूत बंगला फिल्म का ये गीत। और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके।
1: जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आइए देखते हैं कार्यक्रम में हमसे जुड़ने वाले अगले श्रोता कौन हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
2: हेलो नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते जी, किन से बात हो रही है हमारी?
2: हसीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालराना का इंदौर।
0: हसीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
2: आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए।
2: हम भी अच्छे मैडम, आप लोगों की दुआ हमारे साथ।
0: बिल्कुल, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज आप?
2: और फिल्म का नाम है नया जमाना, लता जी की आवाज में, गाने के बोल है रामा रामा गजब हुई गवारे, हाल हमरा जब हुई गवारे, रामा रामा गजब हुई गवारे।
0: क्या बात है, आप जब भी अपने गीत की फरमाइश करती हैं तो चंद लाइनें जरूर सुनाती हैं।
2: जी जी।
0: हसीना जी, बताइए बारिश को लेकर क्या तैयारियां हैं?
2: बारिश के लिए तो मैडम अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, और कल पानी हम ताजे देखने जा रहे थे मैडम, तो बहुत पानी बरसा तो मगर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब भी मोहरम आते हैं ना मैडम तो पानी जरूर गिरता है।
0: अच्छा अच्छा,
2: जब भी ताजे ठंडे होते हैं ना, जब एक तेरा या मतलब थोड़ा बहुत पानी तो बहुत ज्यादा ही आता है, मगर कल ज्यादा आ गया थोड़ा तो अच्छा लगा बहुत।
0: जी, आप ताजी को लेकर हमें इसके पीछे की कुछ कहानी सुनाएंगी, ये किस लिए निकाले जाते हैं ताजिए?
2: ये इसलिए निकाले जाते हैं मैडम कि ये दो हसन हुसैन है ना, दोनों भाई थे, इमाम के लिए मर गए, ईमान के लिए, और ईमानदारी से रहते थे, और ईमान के लिए इन्होंने जान शहीद कर दी मैडम।
0: अच्छा, हसन हुसैन जी
2: अपने पहले जो अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तो अपने देश वाले आजाद हो गए ना, ऐसे वो भी है मैडम।
0: अच्छा।
2: उनसे बढ़कर और मैडम।
0: अच्छा जी, तो उनकी याद में हम लोग ये ताजी निकालते हैं।
2: जी, उनकी याद में ताजी निकालते हैं, क्योंकि उनकी शादी हो रही थी मैडम, दुश्मनों ने शादी में उनकी कत्ल कर दिया।
0: अच्छा, शादी के पहले ही उनकी
2: हल्दी लग रही थी मैडम, उनको हल्दी लगी थी।
0: अच्छा
2: जी,
0: और उसके पहले ही उन्हें खत्म कर दिया गया।
2: जी जी जी, तो कितनी दुखद कहानी है मैडम।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल,
2: उनके वजह से ये ईमान जिंदा है आज, नहीं तो पता नहीं क्या होता।
0: चलिए, तो उनकी शहादत को हमारा भी नमन, और लीजिए आपकी पसंद का गीत हाजिर है नया जमाना फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अब इस फोन इन कार्यक्रम को खत्म करने की दीजिए मुझे यानी रूपाली चव्हाण को इजाजत। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया करना चाहूंगी उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने आज हमारे इस कार्यक्रम में कॉल करके हमारे इस कार्यक्रम को इतना मधुर बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे यानी रूपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। प्रस्तुति अनुजा रघुवंशी की है।
3: स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में। मैं हूं आपके साथ अनुजा। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो ये कार्यक्रम है इसमें हम बात करते हैं आपसे किसी विषय पर और सुनाते हैं फिर आपको प्यारे प्यारे गीत। तो आज का हमारा विषय है आप जिंदगी में कमबैक कैसे करते हैं, तमाम परेशानियों परिस्थितियों के बाद हताश होकर किस तरह दोबारा जिंदगी में एक जिंदगी से लड़ने के लिए दोबारा खड़े हो जाते हैं, खुद को इंस्पायर कैसे करते हैं, अभिप्रेरित कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं, तो किस तरह से आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं हमें बताइए फोन करके। फोन नंबर तो आप जानते ही हैं हमारा 07552660902। तो जल्दी से हमें फोन कीजिए, तब तक आपको हम सुनाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं अपूर्वा बोल रही हूँ, अपूर्वा रघुवंशी।
0: जी, तो अपूर्वा जी, आप क्या करती हैं अपनी ज़िंदगी में खुद को वापस मोटिवेट करने के लिए? अगर हार जाते हैं तो फिर कैसे संभल के वापस खड़ी होती हैं ज़िंदगी की जंग लड़ने के लिए?
1: ऐसा अक्सर होता है जीवन में कि हम बहुत थक जाते हैं और फिर लगता है कि कोई फायदा नहीं है ये सब मेहनत करने का, सब ऐसे ही चलेगा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे मेरे नानी की कही हुई एक बात याद आती है
0: जी।
1: कि जिंदगी सबकी कटती है, कभी समय अच्छा कटता है, कभी बुरा कटता है, लाइफ में सब कुछ बैलेंस में रहता है।
0: जी
1: तो हमें ज्यादा लंबा नहीं सोचना चाहिए, बस आज क्या करना है, कल क्या करना है, इसके आगे नहीं सोचना है और बस अपना कर्म करते जाना है।
0: बिल्कुल, क्या बात है। तो हम चाहते हैं हमारे जो श्रोता हैं वो सारी जो आपने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल उनको अपनी ज़िंदगी में उतारें और इसी तरह से अपनी लाइफ को जिएं। और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दो बच्चे।
0: अच्छा, चलिए तो अब आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
0: हाँ जी गुलबलत से बोल रहा हूँ, विक्रम मालवीय
1: जी। कैसे हैं आप?
0: हम बढ़िया हैं।
1: तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है हमारा कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। तो आप अपनी जिंदगी में मोटिवेट कैसे होते हैं? ऐसी कौन सी चीज है, आप ऐसा क्या करते हैं या फिर किस चीज से इंस्पायर होते हैं कि वापस आप हताश होके दोबारा हिम्मत से जिंदगी के लिए खड़े हो जाते हैं?
0: तो होता है, हिम्मत रखना पड़ती है ना मैडम जी।
1: तो वही हिम्मत आपको कहाँ से मिलती है ये जानना चाहते हैं हम।
0: अपने आप पर विश्वास होना चाहिए।
1: बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आत्मविश्वास होना जरूरी है। इसके अलावा और ऐसा क्या करते हैं आप जिससे आपको खुशी होती है? जैसे मैं आज दुखी हूँ तो मैंने कुछ अच्छा गाना सुन लिया, या फिर मैंने कुछ अच्छा खा लिया, या फिर बच्चों के साथ खेल लिया, या दोस्तों से बात कर ली। तो आप ऐसा क्या करते हैं?
0: ये अपने मित्र या दोस्त है उनको अपनी बात जो है वो शेयर कर दो तो मन हल्का हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, तो आप ये करते हैं अपनी जिंदगी में एक दोबारा जो है कमबैक करने के लिए। बिल्कुल, तो चलिए अब आपको सुनाते हैं हम ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी। सिद्धार्थ जैन से बात हो रही है मैम।
0: जी सिद्धार्थ जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज का कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे। तो अपनी जिंदगी में कमबैक कैसे करते हैं आप, कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं?
1: जैसे कभी कभार, जैसे मैं कभी कुछ परेशान हो जाता हूँ तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसी चीजें देखता हूँ जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन हो।
0: जी
1: जैसे कि कुछ मूवीज हो गई जिसको अपन देख के अपने अंदर प्रोत्साहन जगता है।
0: हाँ
1: आज
0: जी
1: सुबह जैसे मैं एक मूवी देख रहा था, ग्राम पंचायत 2 जो पार्ट सीजन आया है,
0: हाँ जी
1: तो उसमें वही बता रहे हैं कि आप अपनी परिस्थितियों पे कैसे काबू करके अपना काम कर सकते हैं। तो इससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है कि
0: जी
1: अपनी
0: जी
1: परिस्थितियां जो भी है।

0: काम आपको उसी परिस्थितियों में रहकर कैसे अपना आउटपुट बेस्ट देना है, वो चीज अपन उससे सीखते हैं।
1: हाँ जी, तो बिल्कुल हमें आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि आप मूवीज के थ्रू जो है इंस्पायर हो सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं।
0: जी
1: आपने हमें फोन किया, हमें बड़ी खुशी हुई सिद्धार्थ जी। तो अब आपको सुनाते हैं बड़ा ही प्यारा सा ये मोटिवेशनल सॉन्ग।

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा, घोड़ा चतुरा एक पे रहना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: सुप्रिया सिंह से।
0: जी सुप्रिया जी, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया, बिल्कुल ठीक हूँ मैं।
0: तो आप
1: आप
0: अपनी
1: बताइए
0: जिंदगी में
1: आप।
0: कमबैक करने के लिए क्या करती हैं? खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करके कैसे रखती हैं?
1: बहुत सारे, कई बार तो हमारे जीवन पूजा पाठ तो हमेशा ही चलती रहती है,
0: हाँ जी
1: और कई बार अपने बच्चों को देखकर ही बहुत खुशी होती है, तो लगता है कि हम भी इनके जैसे बने,
0: हाँ
1: थोड़ा सा
0: जी
1: हमारे अंदर भी फूर्ति आए, थोड़ा सा हम भी कुछ करें, कुछ नया करें। आसपास के लोग भी कई बार इंस्पायरिंग होते हैं,
0: हाँ जी
1: और भी ढेर सारी चीजें आती हैं।
0: जी बिल्कुल। और आपने जैसे बच्चों की बात करी, तो बच्चे तो सबसे ज़्यादा हम इंस्पायर करते हैं, है ना? जैसे बच्चे, आप देखते हैं कि बच्चे रोते हैं, गिर जाते हैं, फिर वापस थोड़ी देर में हम उन्हें हंसते हुए देखते हैं, खेलते हुए।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं। और कई बार हम जैसे बच्चे, कई बार बेटी है मेरी, तो उसको डांस का बहुत शौक है,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: कई बार वो गानों जो उसके गीत होते हैं डांस वाले, उनको कई बार वो रिपीट करती है, फिर डांस करती है, फिर करती है, फिर कहती है मम्मा ये स्टेप क्या आ रहा है, ये स्टेप क्या आ रहा है। तो हमने आपको इन सारी चीजों से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं, उसने कितनी बार कोशिश की और आखिर में सीख कर ही मानी है ना। तो
0: बिल्कुल,
1: बच्चे
0: हाँ
1: भी कई
0: जी
1: बार हमारे लिए इंस्पायरिंग होते हैं।
0: बिल्कुल। तो चलिए, हमें बड़ी, हम चाहते हैं कि आपकी ये बात हमारे और श्रोताओं तक पहुँचे, जो अभी उदास महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें एक मोटिवेशन और इंस्पायर जो है आप उन्हें ज़रूर
1: जी
0: करेंगी।
1: जी कई बार क्या होता है कि हम कभी बाहर नहीं जा पाते, या बहुत सारा हमें खुद इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारे आसपास ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। हमारे बच्चे हुए, हमारे कई बार बुजुर्ग भी हमको कई बार ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है
0: हाँ
1: ना।
0: जी
1: हमारे हस्बैंड भी वो बेचारे लगे रहते हैं पूरे समय काम करते, या है ना, या कुछ बहुत टिपिकल ऐसी पोजिशन आ जाती है तो भी वो बेचारे लगे रहते। तो हमारे लिए तो बहुत कुछ है ऐसा आसपास से सीखने के लिए।
0: तो चलिए, आपने हमें फोन लगाया, हमें बड़ी खुशी हुई, और अब हम आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा मोटिवेशनल एक गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार। राजस्थान
0: हाँ जी, नमस्ते जी।
1: कोटा से। बस
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आप बताओ, आप कैसे? भूपेंद्र
0: मैं भी बढ़िया हूँ। आपका नाम एक बार हमें बता दीजिए।
1: कुमार गुप्ता।
0: जी भूपेन जी, तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज का विषय है कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे में।
1: मुझे
0: आप
1: बताओ ना, आप
0: खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं? अभी प्रेरित कैसे करते हैं? जिंदगी में प्रेरणा कैसे लाते हैं?
1: जिंदगी में प्रेरणा तो इस प्रकृति से ही है सब कुछ।
0: जैसे आप कभी हताश होते हैं, उदास हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं जिससे आप वापस खुश हो जाते हैं और जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ते हैं?
1: संगीत का सारा लो, अगर उदास होते हो तो
0: जी जी बिल्कुल।
1: संगीत सुनाओ, अपनों के साथ बैठ के बातें करो,
0: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, अपनों से बात करें, संगीत सुने कि हाँ जी
1: पुराने दोस्तों को याद करो,
0: जी बिल्कुल, पुराने
1: उदास
0: दोस्तों को,
1: तो कायदे
0: पुराने
1: की याद
0: पलों
1: करो,
0: को।
1: कायदे से देखा जाए,
0: जी जी बिल्कुल
1: कैसी भी परिस्थिति हो उसका मुकाबला करना चाहिए।
0: बिल्कुल, कैसी भी परिस्थिति हो उसका डटकर हमें मुकाबला करना चाहिए, और उसका तरीका ही है ये चंद खुशियाँ। हाँ जी
1: परेशानियां तो,
0: जी जी
1: अगर परेशानी नहीं हो तो जिंदगी क्या है?
0: बहुत, ये भी बिल्कुल सही बात है।
1: परेशानी बहाल करो तो खुशी खुशी है,
0: जी
1: अब
0: जी
1: मानो तो खुशी है, नहीं मानो तो फिर कुछ भी नहीं।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बातें हुई
1: तो
0: आपसे। अब आपको हम सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्ते
1: जी, नमस्ते मैम।
0: जी। किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरी करिश्मा चौकसे से बात हो रही
0: अच्छा, मेरी आपसे बात हो रही है
1: है। आपकी करिश्मा चौकसे से बात हो
0: जी।
1: रही है।
0: करिश्मा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और करिश्मा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं भोपाल से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, भोपाल से ही बात कर रही हैं। चलिए,
1: हाँ
0: तो मैं आज, जैसा कि आप जानती हैं, हमारा आज का विषय है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में, कि आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं, खुद को प्रेरित कैसे करते हैं जिंदगी जीने के लिए।
1: मैम, मैं खुद को प्रेरित ऐसे करती हूँ कि अपने आसपास के एटमोसफियर को मतलब एक खुशहाल बना के और
0: जी
1: हमेशा खुशियां ढूंढ ढूंढ के अपने आप को मोटिवेटेड करती हूँ।
0: जी क्या बात है! मुझे तो आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप बड़ी हंसमुख हैं। जिंदगी में परेशानियां
1: हाँ
0: होंगी, पर चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है आपके। सही है क्या?
1: मैम, परेशानियां तो जिंदगी में बनी रहती हैं, बट आगे जिंदगी जीने के लिए खुशहाल तो रहना ही पड़ेगा ना। यदि
0: बिल्कुल
1: अपन खुशहाल रहेंगे तो ऑलरेडी खुशियां ही खुशियां ही आएंगी जिंदगी में।
0: बिल्कुल करिश्मा
1: नेगेटिविटी
0: जी।
1: सोचेंगे तो
0: हाँ,
1: नेगेटिविटी ही आएगी।
0: क्या बात है! मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा,
1: हाँ
0: पॉजिटिव सोचोगे तो
1: पॉजिटिविटी, यदि अपन पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी रहेगी अपने आसपास। नेगेटिविटी देखेंगे तो नेगेटिविटी देखेंगे। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में कोशिश करती हूँ कि हमेशा नेगेटिव चीजों से दूर रह के पॉजिटिव चीजों को गेन करूँ और पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहूँ।
0: बिल्कुल। तो हम अपना समझ सकते हैं आपकी, जैसा जो आप कहना चाह रही हैं, कि हमेशा ज़िंदगी में सकारात्मक रहना चाहिए। और जब आप
1: जी हाँ जी
0: परेशान हैं तो आप सकारात्मक सोचने की कोशिश कीजिए और उसका ही प्रयास कीजिए।
1: जी तो क्या सकारात्मक सोचेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी चीज पॉजिटिविटी रहेगी तो वही चीज आपको हर चीज सकारात्मक सकारात्मक दिखेगी।
0: बिल्कुल, आप उसको, उसी परिस्थिति को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे। हमें बड़ी
1: जी
0: खुशी हुई करिश्मा कि आपने हमें फ़ोन लगाया और हमसे इतनी अच्छी बात साझा करी।
1: जी
0: चलिए,
1: जी
0: अब हम
1: मैम
0: आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हेलो,
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते। किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं बोल रही हूँ जुलेखा खत्री इटारसी से
0: जी, कैसी हैं आप?
1: जी मैं अच्छी, आप कैसी?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। इटारसी में मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम तो धूप निकली हुई है।
0: अच्छा, बारिश नहीं हुई अभी?
1: बारिश तो बहुत कम है, बहुत।
0: जी जी बिल्कुल, देखिएगा जल्दी से बारिश होगी अब वहाँ पे।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।
0: तो बात आपकी, गीत हमारे आज कार्यक्रम है और जैसा कि आप जानते हैं हमारा आज का विषय है आप जिंदगी को कैसे जीते हैं, खुद को प्रेरित कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं जिंदगी जीने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे जिंदगी को जीती हैं, वापस उदास होती हैं तो वापस खुश होने के तरीके क्या ढूंढती हैं, हिम्मत से कैसे वापस खड़ी हो जाती हैं।
1: जी तो मैं ऐसे ढूंढती हूँ कि जैसे कभी मैं उदास होती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि और भी तो लोग इतने उदास है, कितनी ज्यादा परेशानी में, हमारी परेशानी हम देखते हैं तो औरों से थोड़ी सी कम लगती है, तो फिर खुश हो जाती हूँ कि नहीं ठीक है।
0: जी जी
1: और चाहती हूँ कि किसी को भी ना आए परेशानियाँ।
0: हाँ जी,
1: और इसमें ध्यान लगा देती हूँ।
0: जी जी बिल्कुल।

0: तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में मेरी माँ है
0: जी
1: और मेरा भाई है।
0: अच्छा, क्या बात है, बिल्कुल। तो माँ तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है, प्रेरणा होती है हमारे लिए, है ना?
1: सही।
0: हमने माँ को तकलीफ में भी देखा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए, हमेशा माँ जो है बीमार होती थी, उसके बाद भी हमारे लिए भोजन बनाना, हमें खाना खिलाना, हमें हमारा ध्यान रखना, हमारी पढ़ाई करवाना, आधी नींद में भी हमारे लिए जागती थी वो हमेशा।
1: बिल्कुल सही, माँ तो माँ होती है, उनका दर्जा तो कोई नहीं ले सकता।
0: बिल्कुल सही बात है। तो सबसे बड़ी प्रेरणा जो है हमें माँ से मिलती है, और आपने हमें फोन किया, हमें बड़ी खुशी हुई।
1: जी, मुझे बहुत खुशी हुई, कई दिनों बाद लगा मैडम जी मेरा फोन।
0: बिल्कुल, अब तो आप देखिएगा, आप प्रयास करते रहिए, फोन जरूर लगेगा आपका।
1: बिल्कुल जी, सही
0: जी, आपने हमें फोन किया, बड़ी खुशी हुई। चलिए अब आपको सुनाते हैं प्यारा सा गीत।

अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमें उम्मीद है कि अब आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा प्रेरणा से, हिम्मत से, मोटिवेशन होकर और इंस्पिरेशन के साथ जिएंगे। अपने आसपास की चीज़ों से खुद को प्रेरित करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी अपनी हिम्मत से प्रेरित करेंगे, मोटिवेशन देंगे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में कहा कि इस साल भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि वो भविष्य में संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है या कोई आक्रामक कार्रवाई करता है तो अमेरिका उसका सैन्य जवाब देगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। और भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी चल रही है। गौंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित हैं। ये प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, जहां आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, इस मौसम की जो गर्मी है उसमें बारिश बस आने ही वाली है, तो चलिए इन बारिश की बूंदों के आगमन के इंतजार में हम शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के लिए आज का पहला खत हमें प्राप्त हुआ है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा का। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले की, जो कि गौरी नगर इंदौर से हैं। इनकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत जो हमने लिया है फिल्म दिल चाहता है से। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम से। अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, उदित नारायण और सुदेश भोसले, साथ ही आदेश श्रीवास्तव की आवाजें हैं। गीतकार हैं समीर और इसको संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने। और साथ ही इसी गीत के लिए हमें खत प्राप्त हुआ है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया का। इसी गीत के लिए हमें अगली फरमाइश मिली है आदर्श नगर मालोट पंजाब से ही राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।
1: हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2

0: श्रोता, यह गीत आप सुन रहे थे फिल्म कल हो ना हो से। वसुंधरा दास, के शान और लॉय मेंडोजा की आवाज़ें, जावेद अख्तर के लिखे बोल और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। साथ ही इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी थी आशा रेडियो श्रोता संघ, मेहर नगर, उमेरखंड, महाराष्ट्र से, अभिजीत गवहाणकर राही, श्रीमती सरिता गवहाणकर, सिद्धांत गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहाणकर, श्रीमती वैशाली गवहाणकर, श्वेता सुमित गवहाणकर और कुमारी ध्वनि गवहाणकर परी। श्रोताओं, आइए अब अगला गीत हम सुनते हैं जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है। सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता नेमा, भावना और प्राची नेमा से। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आजा नचले से, पीयूष मिश्रा के लिखे बोल, सलीम सुलेमान का संगीत और इस गीत में आवाज़ है सुनिधि चौहान की।
1: Dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda din

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, आइए अब अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है। पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की।

फिल्म कभी अलविदा ना कहना से ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था शंकर एहसान लॉय का। और इस गीत में आपने आवाज़ें सुनी शान, वसुंधरा दास और साथियों की। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे वाओ
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: युवाओं के जोश उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे
7: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ मनोरंजन और ज्ञान की बातें
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान
8: आकाशवाणी इंदौर।
7: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
9: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
10: हाँ हाँ क्यों नहीं
9: और झूलते झूलते सुनते हैं
7: मालवा की शान आकाशवाणी
8: इंदौर।
9: अरे दीदी धीरे धीरे
6: अरे तनिष्का कहाँ थी इतने दिनों से?
7: अरे राधिका मैं गई थी कुल्लू मनाली।
6: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
7: अरे काहे का मजा।
6: क्यों क्या हुआ?
7: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
6: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
7: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
6: ये हुई ना बात।
11: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: इस समय आप हैं हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी की अब तक की कड़ियों में आपने जाना कि राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा द्युम्नसेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। कुछ दिनों बाद भुवन मोहिनी की तलाश में राजकुमार इंद्रप्रस्थ पहुंच गया, जहां के राजा आदित्य सेन के यहाँ भुवन मोहिनी आश्रय में थी। आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से कराना चाहता था। चंद्रहासिनी की ओर आकर्षित होने के बावजूद विजय श्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। चंद्रहासिनी ये जानकर भी विवाह करने को तैयार थी। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजय श्रवा के पिता सम्राट द्युम्नसेन ने सभी भारतीय खंड राज्यों की सभा बुलाई, जिसमें हूणों से लड़ने के लिए भारतीय सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा की सभा में हूणों के अपमानजनक प्रस्ताव को पढ़ा गया। आमात्य ऋषभ देव ने कहा कि युद्ध टालने के लिए चंद्रहासिनी को समर्पित कर दिया जाए। ये सुनकर भुवन मोहिनी ने क्रोध में आकर ऋषभ देव का सिर काट दिया। उसके इस कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हुई। राजकुमार के सेनापतित्व में हूणों से युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना विजयी हुई। विजय के बाद विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया और वो सम्राट बना। अब आगे क्या होता है, सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 9वीं कड़ी में।
1: चंद्रहासिनी के साथ मेरा विवाह संपन्न हो गया। धारा नगरी लौटकर सम्राट ने स्वयं संन्यास ले लिया और मुझे सम्राट की गद्दी सौंप दी। आज मेरे पास सब कुछ है। भारत समस्त खंड राज्यों के नरेशों का एक सुदृढ़ संघ बन चुका है और मैं भारत का सम्राट हूं। सत्ता और शक्ति की अविरल धारा बहने लगी है, परंतु फिर भी एक रिक्तता है। भुवन मोहिनी चंद्रहासिनी को साम्राज्ञी बनवाकर राष्ट्र की सुप्त नारियों को जगाने के कार्य में संलग्न हो गई।

0: स्वप्रेरणा से या मुझसे दूर जाने के लिए, नहीं जानता। यद्यपि मैं प्रजा के हितार्थ कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखता हूं, फिर भी मेरी आंखें सदैव भुवन मोहिनी को ही खोजती रहती हैं। प्रत्येक क्षण लगता है कि वो द्वार पर आकर खड़ी हुई है और कहती है,
1: आपने याद किया सम्राट विजय श्रवा?
0: इस ध्वनि को सुनने के लिए मैं तड़प रहा हूं। कब आओगी भुवन मोहिनी? तुम कब आओगी मुझसे मिलने?
1: मैं आपके ही कक्ष में हूं देव।
0: आहा, भुवन मोहिनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे कक्ष में मेरे सामने हो। ना जाने कितने दूत मैंने तुम्हें खोजने के लिए भेजे, सब लौट कर यही बताते रहे कि तुम नहीं मिली। क्यों क्यों भुवन मोहिनी, तुम मुझे भूलकर मुझसे इतनी दूर कैसे चली गई? क्यों चली गई? वो तुम ही हो ना जिसने राजकुमारी चंद्रहासिनी को मेरे जीवन में बलात् प्रवेश कराने की अनवरत चेष्टा की। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमको खोना होगा। मैं दृष्टि फाड़ फाड़ कर सूने पथ पर तुम्हारे बढ़ते चले आने वाले महायान की प्रतीक्षा करता रहता हूं। अपने अंतर की उस विवश आकुलता को दबाकर, किंतु जब तुम्हें नहीं देख पाता तब एक पश्चातापपूर्ण भावना जीवन में घुलकर कहती है, सब व्यर्थ है, मेरे जीवन के कर्म सब व्यर्थ हैं। मेरी दहकती हुई वक्ष भूमि ज्वालामुखी का उद्गार बन जाती है।
1: सम्राट, जिस तरह से आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो चुके हैं, वैसे ही मैंने भी अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया है।
0: बिना मेरी आज्ञा के?
1: सर्व कल्याण के लिए आप जैसे कल्याणकारी सम्राट की आज्ञा आवश्यक नहीं है सम्राट।
0: मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं चाहता भुवन मोहिनी।
1: आपकी उद्विग्नता साम्राज्य की निकटता समाप्त कर देगी सम्राट। आप उन्हें अवसर तो दें। चंद्रहासिनी आपकी पूजा करती हैं, आपको देवों से भी बढ़कर मानती हैं। मेरा क्या है, मुझे आपकी दया ने एक नर्तकी से राष्ट्रभक्त नारी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। मेरे लिए यही आशातीत है। इससे अधिक की ना तो मुझे कोई अभिलाषा है और ना ही कामना। मुझे आज्ञा दें सम्राट, मेरे सामने बहुत कार्य हैं। आपसे प्रार्थना है कि बिना किसी प्रयोजन के मुझे ना बुलवाया करें। प्रणाम।
0: भुवन मोहिनी,
2: क्या भुवन मोहिनी को सम्राट ने बुलवाया था? मेरी प्रियतम, क्या मैं अपना समस्त प्रेम दान देकर भी उस आग की ज्वलनशीलता को कम नहीं कर पाई जिसे भुवन मोहिनी की स्मृति ने दहका रखा है? आह स्वामी, मैंने भूल की है। मैंने अपने सुख के लिए आपके और भुवन मोहिनी के जीवन की होली जला दी है।

0: अरे देखिए ना, ये नन्हे कुंवर के गालों पर ये लाल लाल क्या हो गया है?
1: छोटे बच्चों को ऐसा हो जाया करता है साम्रागी, इसमें परेशान मत हो।
0: अरे अरे रे रे रे, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। अरे नहीं, चुप हो जा बेटे।
1: आज भुवन मोहिनी आ रही है।
0: अच्छा,
1: हाँ, मैंने बुलवाया है, आती ही होगी। 5 वर्ष बाद आज उसके दर्शन होंगे।
0: मैं भी अपनी सखी को देखने के लिए आकुल हूं सम्राट।
2: सम्राट की जय हो।
1: अरे भुवन मोहिनी,

0: तुम्हारी ही चर्चा। कितना परिवर्तन हो गया है तुम्हें, तुम तो साक्षात योगिनी बन चुकी हो।
1: अरे कितना नन्हा देवोपम, कोमलता का प्रतिरूप। बधाई हो बहन चंद्रहासिनी, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए।
2: अरे छोड़ो सखी, इतना ही दुलार था तो पुत्र जन्मोत्सव में क्यों नहीं आई?
1: मेरा रोम रोम इन्हें आशीर्वाद दे रहा था, परंतु मैं अपने कार्यों में इतनी व्यस्त रही कि समय ही नहीं निकाल सकी। मेरी त्रुटि को क्षमा करना बहन। आ आ हाँ, मेरे पास आएंगे। आइए ना, आइए दो ना बहन।
2: हाँ हाँ, ये लो जा, तू भी भुवन मोहिनी की गोद में ही रहा कर। ना जाने कब से तेरे पिता इनके नाम की माला जपते रहे हैं, अब तू भी पिता की भांति मेरा तिरस्कार कर।
0: साम्राज्ञी,
1: ऐसा ऐसा मत कहो बहन। सुना भुवन मोहिनी, ये वही राजकुमारी है जिसको सुखी बनाने के लिए तूने अपनी प्रेम आकांक्षाओं को होम कर दिया। फिर भी राजकुमारी तेरी प्रति कृतज्ञ नहीं है।
2: लाओ मुझे दो, मेरा कुमार है, कहीं इसे भी तुम्हारी गोद की आदत ना पड़ जाए। चलेगा दूध पीने? आ चल, तुझे दूध पिला दूं। मैं तेरी माँ हूँ सम्राट पुत्र। मैं तेरी माँ हूँ। आ आ आ चल।
0: क्षमा मांग सकता हूँ तुमसे भुवन मोहिनी?
1: कुछ मत बोलिए आप, बहुत कड़वी घूंट पी चुकी हूँ, अब इनका प्रभाव नहीं पड़ता। सम्राट अभी तीर्थाटन पर गई थी।
0: कभी अपनी तूलिका से तुम्हारा चित्र बनाया था।
1: नारी सेवा के काम में लग गई हूँ।
0: निर्वासित होते समय तुम्हारा वो मुखड़ा अभी भी मुझे याद है।
1: मैंने अब तक 8 आश्रम आरंभ करा दिए हैं सम्राट।
0: भुवन, कहीं नहीं जाना है तुम्हें।
1: क्यों?
0: इसलिए कि राजकाज से अवकाश मिलने पर जब कभी तुम्हारी पागल स्मृति कौंधती है, तब मेरा हृदय चीत्कार कर उठता है और कहता है, क्या इसीलिए तुमने मुझे विवश करके चंद्रहासिनी को स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी कि तुम मुझसे विलग रहो?
1: तो इसमें बुराई क्या है मेरी सम्राट? आपके दाम्पत्य जीवन में मेरी उपस्थिति सर्वदा बाधक होती और हमारी सम्माननीय साम्राज्ञी समझती कि मैं उनके सरस जीवन में अपनी उपस्थिति से विष घोल रही हूं। आज मुझे संतोष है कि निरंतर 5 वर्षों तक आपसे दूर रहकर मैंने अपने को अपराधिनी बनने से बचा लिया है।
2: ये झूठ है, मुझे फुसलाने का एक विषैला षड्यंत्र है।
0: चंद्रहासिनी!
1: राजकुमारी क्षमा करो, पिछले 5 वर्षों में धारा नगरी में मेरी उपस्थिति अधिक से अधिक मात्र 1 माह की हुई होगी। तब मैं अपने पागल मन को नहीं रोक पाती थी, सबके दर्शन के लिए 2-4 दिन रुक जाती थी। किंतु मुझे आश्चर्य हुआ सुनकर कि मैंने आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में विष घोलने का षड्यंत्र किया। आज भी अपराधिनी सिद्ध होने पर मैं सहर्ष कठोर से कठोर दंड स्वीकार करूंगी।
2: जिसके शीश पर भारत सम्राट का वरद हस्त हो, उसे दंडित करने का अपराध कौन मोल लेगा?
1: असत्य है राजकुमारी, जिस अपराध का संदेह तुम मुझ पर आरोपित कर रही हो, उसे हृदय चीर कर दिखला सकती तो अवश्य दिखलाती कि तुम्हारे प्रियतम को अपनी ओर मिलाए रखने का मैंने कोई कुचक्र कोई षड्यंत्र नहीं रचा। हाँ, मैं सम्राट को नहीं रोक पाती कि वो अपनी ममता की धारा मुझ पर ना उड़े ले।
2: यही यही तो काटा है जिसे दूर होना चाहिए।
0: पा लिया ना तुमने भुवन मोहिनी वो परिणाम जिसके लिए मैंने तुम्हें सावधान किया था।

0: चंद्रहासिनी आज भारत की साम्राज्ञी है। वो तुम जैसी तुच्छ नारी के प्रति कभी कृतज्ञ नहीं हो सकती। उसे वो क्षण भूल गए जब दीनहीन याचक की भांति तुम्हारे सम्मुख नेत्रों में आंसू भरे हुए प्रणयदान के लिए अपना आंचल फैलाए हुए थी। आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर वो मुस्कुरा रही है।
1: फोवर मोहिनी, मेरी बातें जितनी तुम्हें असह्य नहीं होंगी उससे कहीं अधिक भारत सम्राट को दुखा रही हैं। अरे अरे, मुझे क्षमा करो। कहीं इन बातों का बदला मुझसे चुकाया गया तो मैं किसका सहारा खोजूंगी? कम से कम तुम्हारा पक्ष तो भारत सम्राट ग्रहण कर रहे हैं ना फोवर मोहिनी? उन्होंने अभी अभी स्वीकारा है कि तुम्हारे दया के कारण मैं साम्राज्ञी बनी हूं। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारी दया ना लेती? राजकुमारी होने के कारण किसी न किसी राजकुमार की जीवन संगनी तो होती ही ना। किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज सम्राट भी मुझ पर कृतज्ञता का बोझ लादकर कह रहे हैं, यदि तुमने मेरे साथ सदैव व्यवहार ना किया होता तो वो संभवतः मुझे स्वीकार ना करते।
0: हाँ हाँ मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, इसमें कोई संदेह भी मत रखना चंद्रहासिनी।
1: देख लिया ना भुवन मोहिनी, क्या मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से किस प्रकार हमारे दाम्पत्य जीवन में भयानक प्रहार होते हैं? कहा था ना मैंने?
2: साम्राज्ञी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर।
0: साम्राज्ञी से क्षमा याचना करके मुझे अधिक लज्जित मत करो भुवन मोहिनी। तुमने तुमने कोई अपराध नहीं किया, सारा दोष मेरा है। मैंने तुम्हारे अतुल स्नेह के प्रति भयानक अपराध किया है। मैंने ही तुम्हारे समर्पित जीवन को कुचलकर नीरस बनाया है। मैं ही तुम्हारे मरु जीवन में झंझावात पैदा करने वाला भयानक स्वार्थी और लोलुप व्यक्ति सिद्ध हुआ हूं। चलो, आज से मैं अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित करूंगा। चंद्रहासिनी साम्राज्ञी रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं स्वयं सम्राट पद का परित्याग कर तुम्हारे साथ राह राह का भिखारी बनूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा उद्धत प्रेम जो हमारी दृष्टि में हमारा अपमान करने पर तुल जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, अंततः साम्राज्ञी भी एक नारी है, सर्वदा अवध्य अदंडनीय। अस्तु मैं आज से ही साम्राज्ञी से दूर रहूंगा ताकि उन्हें किसी प्रकार हमारे प्रति क्षोभ न उत्पन्न हो। चलो भुवन मोहिनी।
2: सम्राट,
0: मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता भुवन मोहिनी, चलो।

0: हम राजप्रसाद के इस खंड में रहेंगे, याद है ना? यहीं पर मैंने तुम्हारा चित्र बनाया था। किशोरावस्था से लेकर सम्राट होने तक मेरा आवास यही प्रखंड था। कोलाहल से दूर एकांत में, और तुम्हें मेरी सौगंध है भुवन मोहिनी, तुम इस योगिनी स्वरूप का परित्याग करो। एक बार फिर से मुझे उस स्नेह वारुणी से उन्मत्त हो लेने दो, जिसे पीकर मेरा जीवन हरा भरा हो जाए। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे जीवन में भयानक शून्यता आ रही है, और मैं अपने को उसी नीरव शून्यता में विलीन करता जा रहा हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी अपने सौंदर्य मद में प्रतिपल पागल हो रही हैं, और वो समर्पण का ढोंग रचकर प्रतिक्षण मेरे समर्पण की उपेक्षा करती जा रही हैं। मैंने किसी प्रकार 5 वर्ष अपने दाम्पत्य जीवन के नाम पर व्यतीत कर डाले हैं, किंतु चंद्रहासिनी कभी भी सौंदर्योन्माद के विषैले नशे से बच नहीं सकी। वो महानता की उपासिका हैं, जबकि मैं अस्तित्वहीनता का। भुवन मोहिनी, आह, तुम्हारे स्पर्श में अभी भी वही मादकता है, वही विद्युत तरंगों से चपल भावनाओं का मायावी उन्माद, वही प्राणों में कंपन और सिहरन पैदा करने वाली प्राकृतिक वासना का स्फुरण। प्रिय, तुम्हें ये रूप राशि इसलिए नहीं प्राप्त हुई है कि मैं उसे देखकर आत्मविभोर हूं, अप्राप्य की भांति तुम्हें ना प्राप्त कर सकने की छलना में निरंतर जलता रहूं। बोलो भुवन मोहिनी, मैं चंद्रहासिनी के रूप की उत्पत्त गरिमा को बुझा दूंगा यदि तुम्हारा संबल प्राप्त हो। यदि एक बार तुम इस असमय के वैराग्य को ठुकरा सको, अन्यथा ये अतृप्त अनंत जीवन की वासना बनकर मुझे क्षुब्ध करती रहेगी, और मैं लुप्त मधुप की भांति तुम्हारे रूप की यश गाथा को मन ही मन गुनगुनाते हुए उद्भ्रांत बना रहूंगा। मुझे चाहिए तृप्ति, तुम्हारे अक्षय यौवन के उपभोग की पूर्ण स्वीकृति, अन्यथा मैं माननी चंद्रहासिनी के साम्राज्य को ठुकरा दूंगा। चंद्रहासिनी को चाहिए सत्ता और शक्ति, वो उसे मैं स्वेच्छा से प्रदान कर विरक्त हो जाऊंगा। आज चंद्रहासिनी की गोद में साम्राज्य के सिंहासन का प्रतिनिधि खेल रहा है, वो उसके रंग में रंगकर मुझे भूल सकती हैं और मेरी उपेक्षा भी कर सकती हैं, किंतु तुम बोलो, क्या तुम भी मेरी उपेक्षा करना चाहती हो? क्या तुम भी मेरे जीवन में मात्र छलना सिद्ध होना चाहती हो? बोलो भुवन मोहिनी, बोलो, तुम मुझसे घृणा करती हो?
1: नहीं।
0: तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो?
1: नहीं।
0: क्या तुम्हें मेरी वासनात्मक वृत्तियों के प्रति रोष है?
1: नहीं।
0: क्या कभी तुमने अंतर के निगूढ़तम प्रकोष्ठ में मेरी मूर्ति बिठाकर कभी पश्चाताप करना चाहा है?
1: नहीं।
0: क्या कभी तुमने मेरे लिए सर्वस्व उत्सर्ग ना करने की शपथ ली है?
1: कभी नहीं।
0: तो क्या कभी मेरी आसक्ति पर तुम्हें भय या रोष उत्पन्न हुआ था?
1: कभी नहीं।
0: क्या तुम सदैव मुझे देवत्व पर प्रतिष्ठित रखने के बोझ से दबी रही हो?
1: कभी नहीं देव।
0: तो क्या कभी तुम्हें चंद्रहासिनी के जीवन संगनी बनाने का आंतरिक क्षोभ हुआ है?
1: कभी नहीं।
0: तब मायावनी, तब सच सच कहो, मेरी छाया से ही भयभीता बनकर मुझसे दूर क्यों भागती रही हो? क्या मुझसे प्रेम करने का तुम्हारा हार्दिक उल्लास अब मर चुका है?
1: नहीं, किंतु
0: तुम्हें मेरी सौगंध है, मुझसे गोपनीय बनकर रहने की धृष्टता ना करना। मैंने तुम्हारे सम्मुख अपना अंतरपट खोल कर रख दिया है। मैं तुम्हें पाप पुण्य की भावना से विलख रख कर प्यार करता रहा हूं, और आज मैं प्यार के बदले प्यार ही चाहता हूं।
2: आप तो प्यार पा ही रहे हैं सम्राट, भुवन मोहिनी आपकी गोद में अल्लड़ बालक सी मचल जो रही है।
0: ऐसी ही बैठी रहो भुवन मोहिनी। साम्राज्ञी, तुमने मेरे एकांत में पहुंचकर भीषण अपराध किया है। सावधान, अब तुम्हें अपने किए का दंड भोगना ही पड़ेगा। देखो, नेत्रों में आग भर के देखो, आज से मेरी गोद में प्रणय लीला रचाने वाली भुवन मोहिनी पुनः प्रतिष्ठित हो चुकी है। तुमने मुझसे जो प्रणय दान चाहा था वो भी भुवन मोहिनी का उच्छिष्ट था। भुवन मोहिनी की अनिच्छा देखकर भी मैं उसे अपने प्रेम दान से विभूषित करूंगा।
1: सम्राट!
0: भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी कहां जा रही? रुक जाओ भुवन मोहिनी।

हे मेरे जीवन के शत शत सहस्त्र लक्ष विद्रोह के स्फुलिंगो, तुम एक बार एकाकार होकर प्रलयंकारी महाज्वाल बनकर धधक उठो। असीम वेदनाएं, अगणित निराशाएं, तीव्र जलन और घोर हाहाकार जीवन को इतना रुला चुका है कि अब आंसू सूख गए हैं। विद्रोह प्रबल हो उठा है, हमारी रग रग में एक ज्योति जलने लगी है। जीवन चाहता है कि उसी में भस्म हो जाए, मुट्ठी भर राख के अतिरिक्त कोई अवशेष न बचे। अपने भौतिक अस्तित्व

0: पर अभिमान करने वालों को मैं बता जाऊं कि कैसे मरना होता है। आत्महनन करके मैंने जो पुण्य कमाया था वो तो मानो आत्मछल था। वो सर्वदा अपने आप को धोखा देती रही, किंतु आज आज अंतर तारों से जो चीत्कार प्रतिध्वनित हो रहा है वो मानो करुणा सागर में जीवन की समाधि लगा देगा। चंद्रहासिनी के लिए मुझे अपने सुख का परित्याग करना पड़ा था, चंद्रहासिनी के लिए दान कर डाला था अपने प्रीतम प्रणय के अनंत बसंतों को। यदि यदि मैं समझ पाती कि उस प्रतिदान का परिणाम आंसुओं में जीवन को विगलित कर देना है तो क्यों अपने मिलन भरे वसंत में पतझड़ लाती। काश काश मैं ना समझती कि प्रेम की पीड़ा से छटपटाने वाली एक सुंदरी राजकुमारी ने मेरे ऋतुराज को छीनकर अपना वसंत मनाया है। आज आज मैंने चंद्रहासिनी की दृष्टि में प्रेम की असहिष्णुता का दर्शन किया। वो तो मानो मेरे प्रणय की प्रतिस्पर्धिनी बनकर उग्र प्रतिकार के लिए तत्पर है, किंतु दूसरी ओर मेरे प्रियतम विजय श्रवा की आकुलता घुन सी मेरे जीवन की सुख शांति और समृद्धि को चूर चूर कर रही है। अब मेरे सामने मात्र दो रास्ते हैं, या तो मैं चंद्रहासिनी की सर्वत्र उपेक्षा करके विजय श्रवा के जीवन को मधुमेह वसंत के मादक हिलोरों से भर दूं, या अपने जीवन का अंत करके चंद्रहासिनी के लिए सर्वस्व उत्सर्ग कर जाऊं। परंतु यदि मैं उत्सर्ग करती हूं तो मेरे प्रिय का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं देव के जीवन में सरस वसंत अनुप्राणित करने का एक बार प्रयास अवश्य करूंगी, भले ही मुझे चंद्रहासिनी की कोपाग्नि में भस्म ही क्यों ना होना पड़े।
1: कहां है साम्राज्ञी? साम्राज्ञी के महल के सभी दासों और परिचारिकाओं सुन लो, अब तुम्हें साम्राज्ञी की सेवा में लगे रहने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रहासिनी, मैं आज तुम्हें दंड देने आया हूं। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए?
2: सम्राट,
1: मैं तुम्हें शारीरिक दंड न देकर मानसिक दंड दूंगा। मैंने तुम्हें साम्राज्ञी पद पर प्रतिष्ठित करके भयानक भूल की है। एक अकृतज्ञ नारी हो तुम। जाओ, आज से तुम साम्राज्ञी पद से वंचित की जा रही हो।
2: नहीं,
1: मैं आज ही आदेश देता हूं कि समस्त साम्राज्य की प्रजा तुम्हें राजकुमारी चंद्रहासिनी के नाम से संबोधित करे, ना कि साम्राज्ञी।
2: नहीं सम्राट,
1: तुम्हें मेरे राज प्रासाद को भी त्यागना होगा।
2: परंतु सम्राट,
1: तुम्हें अपने राजकुमारी होने पर गर्व है ना? तो जाओ, महाराज आदित्य सेन की लाडली बनकर इंद्रप्रस्थ के राजमहल को सुशोभित करो। तुम जैसी माननी के लिए धारा नगरी के राजप्रसाद में कोई स्थान नहीं है।
2: नहीं, सम्राट।
1: मैं इस अंतापुर की संरक्षिका को आदेश देता हूं कि 24 घंटों के अंदर चंद्रहासिनी धारा नगरी के अंतापुर का परित्याग कर दे।
3: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का 9वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 3 दिवसीय गुना जिले के दौरे पर हैं। आज इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में आमजनों से मिलकर उनकी समस्या संबंधी आवेदन प्राप्त किए। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले

मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से दो दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। वह गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन रुठियाए, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। और भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। दोपहर के 1 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। योगदान आकाशवाणी के रीवा केंद्र का है।

सी कोमल चांद सी प्यारी, धरती की शोभा है हर नारी। उसकी हंसी में सावन गाए, उसकी ममता जग महकाए। नदियों सी निर्मल उसकी धारा, जीवन में भर दे उजियारा। सूरज सा साहस दीपक सामान, नारी है सृष्टि की पहचान। हरियाली का संदेश सुनाती, प्रेम और करुणा की ज्योति जलाती। नारी और प्रकृति का यह नाता, सारे जग को सुख दे जाता। मैनो इसी जोश और उमंग के साथ हम फिर हाजिर हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो बहनों स्वीकार कीजिए अष्टा का नमस्कार। बहनों जनगणना किसी भी देश की जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कार्य सामान्यतः प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। बहनों जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सरकार विभिन्न योजनाएं बनाती है और देश के विकास की दिशा निर्धारित करती है। बहनों जनगणना में महिलाओं की भागीदारी और उनकी सही जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। बहनों लोग सोचते हैं जनगणना केवल देश के लोगों की संख्या जानने का माध्यम है, लेकिन बहनों जनगणना से यह पता चलता है कि देश में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, कितनी महिलाएं रोजगार से जुड़ी हैं और किन क्षेत्रों में महिलाओं को अधिक सहायता की आवश्यकता है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मातृत्व लाभ, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से संबंधित योजनाएं तैयार करती है। बहनों हम महिलाओं को यह समझना आवश्यक है कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के बेहतर भविष्य का आधार है। बहनों प्रत्येक महिला का कर्तव्य है कि वह 2027 में होने वाली जनगणना में जनगणना अधिकारी को सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करे, साथ ही अपने परिवार और समाज की अन्य महिलाओं को भी जनगणना में सहयोग करने के लिए प्रेरित करे। बहनों एक जागरूक महिला न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के विकास में योगदान देती है, क्योंकि जब महिलाएं जागरूक होंगी और जनगणना में सहयोग देंगी, तभी एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। अब आइए बहनों मोहम्मद रफी की आवाज में सुन लेते हैं आराधना फिल्म का ये गीत।

0: आइए बहनों, हम 2027 में होने वाले जनगणना के बारे में श्रेया पांडे से बातचीत करते हैं। श्रेया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्ते, मैं श्रेया पांडे। जनगणना किसी भी देश के विकास की आधारशिला है। इसके बिना सरकार योजनाएं नहीं बना सकती और न ही जनता की को क्या आवश्यकता है ये ठीक से समझ सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जनगणना में अपना पूरा सहयोग दे। जनगणना किसी भी देश में रहने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, शिक्षा, भाषा, व्यवसाय, आवास आदि से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने की एक सरकारी प्रक्रिया है। यह हर 10 वर्ष में कराई जाती है।
0: क्या जनगणना में महिलाओं की सही संख्या, सही स्थिति दर्ज होना आवश्यक है?
1: हाँ, महिलाओं की सही संख्या एवं स्थिति का जनगणना में, जिससे कि उनकी सामाजिक स्थिति का पता चलता है, वे सामाजिक रूप से कहाँ, उनकी क्या स्थिति है, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण और उनका जो लिंगानुपात है वो भी कितना बढ़ा या घटा, इसकी जानकारी के लिए उनकी सही महिलाओं की सही जानकारी जनगणना में होना बहुत आवश्यक है।

0: जिससे कि उनके लिए जो भी योजनाएं बनेंगी उनको बनाने में बहुत सहायता मिलती है।
1: महिलाओं और बच्चों के विकास में जनगणना की क्या भूमिका है?
0: महिलाओं एवं बच्चों के विकास में जनगणना की बहुत भूमिका है। महिलाओं के सही स्थिति महिलाएं एवं बच्चों के बारे में दर्ज होने से महिलाओं के विकास के लिए योजना बनाने में मदद मिलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं रोजगार संबंधी योजनाएं महिलाओं को पहुंचाने में बहुत सहायता मिलती है एवं महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए बेहतर नीतियाँ बनाई जा सकती हैं जनगणना के माध्यम से। एवं बच्चों के विकास में मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी योजनाएं बनाने में बेहतर सहायता मिलती है। महिला रोजगार एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी के आधार पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं।
1: श्रेया जी, आपने हमारी बहनों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: बहनों। अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसी व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभूति है जिसमें महिलाएं अपने आप को सक्रिय, सृजनशील, समझदार तथा योग्य महसूस करती हैं, जिससे उनकी विभिन्न क्षमताओं व योग्यताओं को यथा योग्य सम्मान मिलता है। साथ ही निर्भीक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती हैं महिलाएं और जहां चाहे वहां आ जा सकती हैं और कठिन से कठिन कार्य करने में कभी पीछे नहीं हटती। बहनों, अक्सर देखने में आता है कि खून की कमी मतलब एनीमिया की बीमारी भारत में महिलाओं और किशोरियों के सामने एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गई है। बहनों, हमारे शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होने पर हमें कमजोरी लगती है और थोड़ा सा काम करने तो थक होने लगती है। विशेष रूप से किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का प्रभाव अधिक देखा जाता है। बहनों, मिशन उत्कर्ष 2026 का मुख्य उद्देश्य ये है कि एनीमिया से प्रभावित किशोरियों और महिलाओं में पोषण के स्तर को सुधारना व स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। बहनों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता, पोषण संबंधी शिक्षा, आयरन की पूर्ति और नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान दिया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि एनीमिया मुक्त भारत के सपने को साकार किया जाए। बहनों, खून की कमी मतलब एनीमिया होना, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे शरीर में आयरन की कमी, जरूरी पोषक तत्वों का अभाव, बार बार संक्रमण होने के कारण भी हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है। बहनों, आप सोचेंगे कि किस प्रकार का संक्रमण? बहनों, जैसे बार बार दस्त लगना, उल्टी होना, भूख ना लगना। लगातार कई दिनों तक दस्त लगने से व्यक्ति की भूख भी मर जाती है और वह खाना ना मात्र का खाता है, जिस कारण शरीर कमजोर हो जाता, साथ ही हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है, व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। यदि सही उपचार ना मिला तो यह मौत का कारण भी बन सकता है। बहनों, मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तचाप, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता में कमी भी एनीमिया का कारण बन सकती है। इसीलिए बहनों, सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है किशोरियों में खून की कमी की पहचान के लिए नियमित जांच कराई जाती है। आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण भी कर रही है सरकार। बहनों, संतुलित व पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक कर रही है सरकार, लेकिन माताओं बहनों को भी ध्यान देना चाहिए कि हर घर में माताओं के साथ साथ बेटियों को भी खास तौर पर पौष्टिक आहार प्रदान करें, क्योंकि आज की बेटी कल की माँ होती है और मजबूत नागरिक बनती है। बहनों, एनीमिया की समस्या दूर होने से शिक्षा, कार्य क्षमता और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। लगभग 95,000 किशोरियों को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बहनों, हम महिलाओं को यह प्रयास करना चाहिए कि घर में सभी को अच्छे से अच्छा पौष्टिक आहार प्रदान करें, जिससे किसी भी व्यक्ति को, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, एनीमिया का शिकार ना हो वो। बहनों, यदि सरकार, समाज और परिवार एक साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाते हैं तो भारत निश्चित रूप से एनीमिया मुक्त और स्वस्थ भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा। बहनों, आइए

मैनू कभी कभी तला भुना खाते खाते मन ऊब सा जाता है। लगता है कुछ झटपट बनाकर खाया जाए जो हमारी सेहत के लिए भी लाभकारी है और हमारा पेट भी भर जाए और जो बच्चे बूढ़े जवान सभी को पसंद आए। बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वादिष्ट दलिये की खिचड़ी। बनाने की विधि इस प्रकार है। हमें चाहिए 1 कप दलिया गेहूं का, आधा कप मूंग की दाल, 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 1 छोटी गाजर बारीक कटी हुई, 1/4 कप हरे मटर के दाने, 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच घी, आधा छोटा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, 4 कप पानी। बहनों, दलिया बनाना शुरू करते हैं हम। बहनों, दलिये को कड़ाही में डालकर थोड़ा सा घी डालें और हल्का भूंज लें। फिर मूंग की दाल को अच्छे से धो लें। आप कुकर में घी गर्म करें और जीरा डालें। जीरा चटक जाए तो उसमें प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूंजें, फिर गाजर डालें और टमाटर डालकर 2 से 3 मिनट तक भूनते रहें। अब दलिया और मूंग की दाल डालकर 1 मिनट तक चलाएं। फिर हल्दी, नमक और पानी डाल दें। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटी आने तक पकने दें। कुकर के ठंडे होने पर खिचड़ी को अच्छी तरह मिला लें। फिर ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दें, बारीक कटी हरा धनिया डाल दें। आप गर्मा गर्म दलिये की खिचड़ी दही या पापड़ हरी चटनी के साथ परोसें। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और जल्दी से पच जाता है। बहनों, आप लीजिए गर्मा गर्म दलिये का आनंद अपने पूरे परिवार के साथ। साथ ही सुन लीजिए ये प्यारा सा गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

आकाशवाणी रीवा के योगदान के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
6: और झूलते झूलते सुनते हैं
4: मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
6: अरे दीदी, धीरे धीरे।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा,
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।

मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 1:30 होने को हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है। श्रोताओं, लोक संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुन्नी गंधर्वा का गाया गैलहई गीत।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। योगदान आकाशवाणी रीवा का है। श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाए कुछ गीत और भजन। तो आइए सुनते हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये भजन।

अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये भजन अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है, जिसे आप सुन रहे थे आकाशवाणी रीवा के योगदान से। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
8: अंगवा की डार पे जी।
6: और झूलते झूलते सुनते हैं
4: मालवा की शान, आकाशवाणी
5: इंदौर।
6: अरे दीदी, धीरे धीरे।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा।
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म अपना सपना मनी मनी का ये गीत। मीका सिंह की आवाज़, शब्बीर अहमद के बोल और प्रीतम का संगीत।

आनंद राज आनंद और श्वेता पंडित की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म वेलकम का ये गीत। आनंद राज आनंद के लिखे बोल और संगीत है अनजान सागरी का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाहिद। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। समिट में 2000 से अधिक प्रतिभागियों, जिनमें एमएसएमई उद्यमी, स्टार्टअप, वित्तीय संस्थान, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं महिला व स्व सहायता समूह शामिल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। शुरुआत में यह सेवा राज्य के 14 प्रमुख शहरों में शुरू की जाएगी। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से बातचीत करने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अगले दिन मुख्यमंत्री स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। वहीं पौधरोपण कार्यक्रम के बाद कॉफी प्लांटेशन का निरीक्षण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। श्री सिंधिया का रुथियाई क्षेत्र में एक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। वहीं श्री नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया। कटनी जिले में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। नरसिंहपुर जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

0: Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका।

0: रहती है
1: decisions being made on the global stage.
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
4: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
2: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
4: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला किया।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
5: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
2: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले

0: छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अब पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं फिर एक बार, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और आपको गीत सुनवाते हैं फिल्म दे दनादन से। सैयद कादरी के लिखे इस गीत को आवाजें दी है राहत फतेह अली खान और सुजैन डिमेलो ने, संगीत है प्रीतम का। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमंद्र और सन्मति पंचोलिया की। साथ ही हमें अगला खत इसी गीत के लिए मिला है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आज प्राप्त हुई है कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा श्रीमाली का। साथ ही इसी गीत के लिए अगला खत हमें प्राप्त हुआ है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन का। तो आइए आपकी फरमाइश पर यह गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बॉडीगार्ड से। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को आवाज़ें दी हैं एश किंग और क्लिंटन ने, संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमें फरमाइश भेजी है अगले गीत के लिए ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। साथ ही दुबेहा नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इसी गीत के लिए अगला खत हमें मिला है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले का। तो आपकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुर्बान फिल्म का ये गीत। निरंजन अयंगर ने इस गीत को लिखा है, सलीम सुलेमान का संगीत और

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सिंघम से। श्रेया घोषाल और अजय की आवाजें हैं, स्वानंद किरकिरे के लिखे बोल और अजय अतुल का संगीत। इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है महादेव घाट अमलेश्वर से। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति ठाकुर और बेबी रेहांश ठाकुर की। इसी गीत के लिए हमें अगला खत प्राप्त हुआ है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत वर्मा। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। आतिफ असलम और अलीशा चुनॉय की आवाज़ें हैं, आशीष पंडित के लिखे बोल और प्रीतम का संगीत।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। कमरुला ठेकेदार नसीम बेगम, ऐशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया शोएब खान, पोत्रा मुस्तफ़ा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर से। इनकी फरमाइश है फिल्म लव आजकल का ये गीत, जिसे गाया है राहत फ़तेह अली खान ने, इरशाद कामिल के लिखे बोल और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, फिल्म लव आजकल के इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। वह गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव डीटीएच न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर हमारी इस सभा के समापन से पहले आइए एक नजर डालते हैं सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, शाम की सभा के आगाज के साथ सुनिए युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की होगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 5:33, शाम 6 और रात्रि 8:35 पर। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस स्टूडियो पॉडकास्ट सीरीज का 7वां अंक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। कार्यक्रम विज्ञान भारती का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनिए प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन रात्रि 10:00। इस कार्यक्रम का प्रसारण भी आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। ये थे आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन, साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी यह सभा यहीं विराम लेती है। शाम की सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक डीटीएच पर यह प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। दोपहर के 3:02 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। श्रोताओं, लोक संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुन्नी गंधर्वा द्वारा गाए कुछ लोकगीत। तो आइए सुनते हैं मुन्नी गंधर्वा द्वारा गाया गैला।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजने को ही हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं जयति
1: और मैं मार्गिशा, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: श्रोताओं, आज है शनिवार, यानी हमारा फोन इन का कार्यक्रम, जिसमें हम करेंगे हमारे श्रोताओं से बातचीत और सुनेंगे उन्हीं की पसंद के गीत।
1: तो चलिए दोस्तों, आप भी जल्दी से अपने फोन उठा लीजिए और हमें फोन कीजिए 0731271023, या आप हमें फोन कर सकते हैं 0731271024 पर।
0: लेकिन मार्गेश, इसके पहले कि हम हमारे कॉलर से कनेक्ट करना शुरू करें, हम चलते हैं कार्यक्रम की उस कड़ी में जिसमें हम पूछेंगे हमारे श्रोताओं से सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। और उसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को भारत में दो बार काटती है?
1: और आज का दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को किस तिथि को अपनाया गया था?
0: हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम के अंत तक आप इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब हमारे लिए ढूंढ कर रखेंगे। तो बिना विलंब किए

0: हम जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर के साथ। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार
1: जी। नमस्ते, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गंगा यमुना सरस्वती फिल्म का है
0: जी,
1: साजन मेरा उस पार है।
0: कौन सा? साजन मेरे,
1: साजन मेरा उस पार है।
0: अच्छा अच्छा, ये गीत सुनना पसंद करेंगे आज आप।
1: हाँ जी।
0: तो सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं, कि आपका स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है?
1: हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: जी, हमें भी, हमारे श्रोताओं से बात करके अच्छा लगता है। और अभी आपके गांव में, आपके तहसील में मौसम कैसा है?
1: जी, मौसम सुहाना बन चुका है, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है रुक रुक कर।
0: जी, वैसे देखा
1: हाँ
0: जाए तो
1: जी।
0: शायद पूरे मध्य प्रदेश में थोड़ा ऐसा ही कुछ मौसम है, थोड़ी थोड़ी बारिश है, बीच में धूप भी है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस सब के बीच हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कि इस समय कई लोग बीमार पड़ते हैं क्योंकि गर्मी अभी जस्ट ख़त्म हुई है और बारिश का मौसम आने लगा है। तो आप
1: जी
0: क्या क्या
1: हाँ,
0: प्रिकॉशंस
1: स्वास्थ्य
0: रखते हैं
1: का ध्यान
0: बारिश में?
1: रखना सभी को जरूरी होता है,
0: जी
1: क्योंकि अब बरसात का पानी वो भी आता है और गर्मी भी होती है, और मतलब मानसून चेंज होता है ना, तो मतलब बीमार होने की संभावना थोड़ी होती है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखे सभी श्रोता, और अपने आप मतलब सेहतमंद रहे।
0: जी, बहुत सही बात कही आपने। तो धन्यवाद आज फोन करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो हेलो फ्रेंड्स।
0: हाँ नमस्कार, मैं राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल बोल रही हूँ। दीदी
1: नमस्ते। राजू जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है दीदी।
1: पहले आप मुझे बता दीजिए कि आप आज युवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: आज गीत है दीदी, महान संगीतकार आरडी बर्मन जो के पंचमदा के नाम से जानते हैं सभी श्रोता और सभी पूरा देश जानता उनको, तो उनका ही गीत है।

0: ये महबूबा पिक्चर का उनका गाया हुआ ही गीत है और उनका ही संगीत है उसमें। तो
1: अच्छा,
0: हाँ, महबूबा महबूबा गीत है, जलाल आगा साहब पे फिल्माया हुआ गीत है ये। और आर डी बर्मन को की जन्म जयंती है आज,
1: जी
0: पंचम दा। हाँ,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: गीत बनाए उनने, अच्छे अच्छे गीत बनाए और अच्छा प्रयोग करा है उनने संगीत में अपने। अभी तरह के गीत बनाए तो उनका गीत सुनवा दीजिए, शोले फिल्म से है, महबूबा
1: जी जी बिल्कुल
0: महबूबा।
1: बिल्कुल, हमें मिल चुका है गीत, तो सुनिए आपकी पसंद का ये गीत फिल्म शोले से।

0: चलिए अब जुड़ते हैं हमारे अगली कॉलर से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आपका नाम बताइए। जी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे युववाणी पर?
1: मुझे
0: जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है, आप अपने रेडियो सेट से थोड़ा सा दूर जाकर बात कीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके।
1: अभी आ रही है?
0: जी
1: अभी आया आवाज़?
0: जी जी बोलिए। जी आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, थोड़ा सा आप कहीं और जाकर बात करने की कोशिश कीजिए।
1: अभी अभी आया?
0: जी जी अभी अच्छे से आपकी आवाज़ आ रही है।
1: हाँ तो मुझे वो आविष्कार का गाना सुनना है, पुराना वाला, मन्नाड़े का गाया हुआ।
0: जी कौन सा गीत?
1: हटने की चाह ने जितना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं दर्द मेरा साया है।
0: जी जी जी, तो आपने जैसे कहा महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, पुणे से बात कर रहे हैं आप, तो युववाणी आप सुनते रहते हैं?
1: कभी कभी सुन पाते हैं मतलब।
0: अच्छा, तो आज आपका फोन भी लग गया, अच्छी बात है। और पुणे में अभी मौसम वगैरह कैसा है?
1: अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है मैडम।
0: जी जी,
1: बीच में तो खुला ही था।
0: जी जी, ये भी। और पुणे में मैंने सर सुना है कि काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है, उसके कारण बारिश के मौसम में कई लोगों को दिक्कत भी आती है।
1: बहुत दिक्कत आती है।
0: जी जी, तो बारिश में हमें ध्यान रखना चाहिए और हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, जिससे कम से कम ट्रैफिक जैसी स्थिति बने और बारिश में ये सब दिक्कतें ना आए। जी जी, तो फिर धन्यवाद आज फोन करने के लिए। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: चलिए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ में। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: परवान जी, आपसे तो मेरी हो चुकी है पहले भी एक बार बातचीत। बताइए कैसे हैं आप, और आज आप युवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: दीदी मैं अच्छा हूँ, और हम किसान है दीदी, तो हमारे इधर बोनी हो चुकी सोयाबीन मक्का की, तो बड़ा खुश है हम।
0: अरे वाह, बधाई हो आपको।
1: जी जी, धन्यवाद दीदी।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी, फिल्म का नाम है मेरा साया।
0: अरे वाह,
1: गाने के बोले नैनों में बदरा छाए।
0: अरे वाह, बहुत ही सुंदर गाने की पसंद है। तो जब तक हम उसे ढूंढ रहे हैं हमारे सिस्टम में, तब तक आप बताइए क्या चल रहा है, कैसे हैं आप?
1: दीदी अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप युवाणी में, मुझे लगता है आप तो वर्षों के श्रोता हैं ही हमारे।
1: जी हाँ दीदी, 3 साल से सुन रहा हूँ युवाणी में, और आपका कार्यक्रम तो आप सुबह वाला भी सुनता हूँ, जो लाइव कार्यक्रम आता है ना MH हॉटलाइन दीदी, उसको भी सुनता हूँ।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, और आपकी पसंद का गीत भी हमें मिल चुका है, तो सुनते हैं नैनो में बदरा छाए गीत, फिल्म मेरा साया।
1: धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद जी।

0: आइए अब जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, नमस्कार
0: जी। आपका नाम बताइए।
1: दीदी मैं दूल्हे सिंह यादव बोल रहा हूँ, ग्राम बागचा, जिला आगरमालवा से।
0: अच्छा, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीदी ये राही बदल गया फिल्म का सुनवा दीजिए, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में है
0: जी। कौन सा बोल बता दीजिए।
1: एक बात दिल में आई है कहूँ या ना कहूँ।
0: अच्छा अच्छा, ये गीत सुनना पसंद करेंगे आज। तो ये गीत सुनने की कुछ खास वजह है? आपको पसंद है ये गीत या कुछ?
1: ये दीदी है आर डी बर्मन का संगीत की फिल्म है
0: जी। जी
1: आज उनका जन्मदिन था
0: जी। जी जी,
1: इसलिए सुबह हमने वो सुना, एक फनकार उसने बताया था सारा।
0: हाँ हाँ,
1: तो हमें मालूम है दीदी।
0: अरे वाह, क्या बात है। आर डी बर्मन सर को तो शायद हम सभी जानते हैं और उनके गीत जो है वो हम सबने अपने जीवन में कभी ना कभी सुने ही होंगे। इतने महान संगीतकार रहे हैं वो और उनके बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग्स रहे हैं पूरे बॉलीवुड में।
1: हाँ दीदी
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आइए फिर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: चलिए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। नमस्ते जी।
1: आदरणीय मैडम जी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
0: नमस्ते अशोक जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आकाशवाणी टीम इंदौर के।
0: हम भी एकदम ठीक हैं। बारिश शुरू हो गई है तो मौसम के मजे ले रहे हैं।
1: मजे के ले रहे हैं, इधर तो बारिश नहीं आ रही है। मानसून तो आ गया मगर बारिश नहीं हुई अभी तक।
0: इंदौर में भी अभी हल्की फुल्की हो रही है, कभी एक आध बार हो जाती है आधे पौन घंटे के लिए, फिर रुक जाती है। तो अभी पूरी तरह से तो मॉनसून नहीं शुरू हुआ है यहाँ पर भी।
1: मैडम आज लाइन क्लियर मिली तो जल्दी लग गया, फोन लगता नहीं है।
0: ये तो हमारे श्रोताओं की शिकायत हमारे से हमेशा ही रहती है। तो पहले आप मुझे बता दीजिए, बातें तो आगे चलती ही रहेंगी, कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म लैला मंजूर का, मोहम्मद रफी लता जी की आवाज। तो अब अगर हमसे खुदाई भी खपा हो जाए,
0: फिल्म लैला मजनू से। हम ढूंढते हैं वो गीत हमारे सर्वर में, तब तक के अब आप मुझसे बातचीत कीजिए। क्या कह रहे थे आप?
1: हाँ, जो भी लैला मजनू का गीत है सुना दीजिए, लता जी की आवाज वाला भी चलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए फिर मिल गया है हमें गीत, तो सुनते हैं फिल्म लैला मजनू से ये गीत आपकी पसंद का।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले श्रोता से जुड़ते हैं। हेलो फ्रेंड।
1: हेलो फ्रेंड, मैडम मैं अलीगढ़ से विजय कुमार
0: जी। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे विजय जी?
1: मैम मेरा गाना है, फिल्म का नाम है तमन्ना, जिसमें पूजा भट्ट हीरोइन थी
0: जी जी,
1: और उसका गाना है ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं।
0: अच्छा, ये गीत सुनते हैं, तो तब तक हम ये गीत ढूंढते हैं। और बताइए आप कैसे हैं?
1: मैडम मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं और मौसम का मजा ले रहे हैं, बारिश शुरू हो चुकी है। आपके यहाँ मौसम कैसा है?
1: हमारे यहाँ अभी बारिश शुरू नहीं हुई मैडम, अभी नहीं आया मानसून।
0: आ जाएगा, वैसे देखा जाए तो अभी सब दूर अच्छे से आया भी नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी बारिश होती है दिन में।
1: यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है मैडम।
0: गर्मी तो है पूरे देश में ही, इस साल शायद बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है और अब सबको मानसून का इंतजार है कि बस मानसून आए, बारिश हो और गर्मी कम हो।
1: और मैडम अलीगढ़ के ताले बहुत मशहूर है यहाँ पर।
0: जी जी, हमने ये बहुत बार सुना है कि अलीगढ़ के ताले बहुत मशहूर है
1: और अलीगढ़ का किला भी बहुत मशहूर
0: जी। अलीगढ़ के किले के बारे में तो कौन नहीं जानता, और जो भी मध्य प्रदेश में घूमने आते हैं उनको अपनी बकेट लिस्ट में जरूर ऐड करना चाहिए कि अलीगढ़ का जो किला है उसे एक न एक बार घूम ही लें।
1: बहुत मशहूर है यहाँ का किला। और मैडम मेरी इससे पहले 18 अप्रैल को बात हुई थी आपसे
0: जी। 18 अप्रैल आपको डेट याद है?
1: याद है मैडम, मुझे सब याद रहता है।
0: क्या बात है, तो बहुत अच्छा लगा कि आपका दोबारा से फोन लगा और धन्यवाद आज फोन करने के लिए। आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: नमस्ते मैडम।

0: हाँ जी नमस्कार मैडम।
1: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
0: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
1: नमस्ते, कैसे हैं आप?
0: बस हम बढ़िया, आप कैसे हैं?
1: मैं भी एकदम ठीक हूँ। बताइए, आज आप युवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: मैडम मुझे सुनवा दीजिएगा आन मिलो सजना का।
1: आन मिलो सजना से कौन सा गीत?
0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। कोई नजराना लेके आया दीवाना तेरे लिए।
1: कोई नजराना लेकर आया है दीवाना तेरे लिए, बहुत ही अच्छी गाने की पसंद है। तो हम ढूंढ रहे हैं गाना हमारे सिस्टम में, तब तक बताइए कैसा चल रहा है, कैसी चल रही है जिंदगी?
0: बस मैडम जिंदगी तो बहुत तो खूबसूरत ढंग से चल रही है।
1: अरे वाह, हमें भी बताइए कुछ अच्छे खूबसूरत पल बताइए, हमारे श्रोताओं को भी सुनाएंगे।
0: मैडम एक सीनियर सिटीजन है।
1: अच्छा,
0: तो सरकार ने तो हमें अपने कार्य से मुक्त कर दी, लेकिन पारिवारिक कार्यों से मुक्त नहीं हो पाए हैं।
1: वो तो सिलसिला मुझे लगता है हमेशा ही जारी रहेगा, वो तो नहीं खत्म होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, और घर पे जो है परिवार की कोई ना कोई जो है ख्वाहिश लगी रहती है, तो उसी को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं।
1: हाँ, तो उसमें भी एक अलग तरह का आनंद है, एक सुख है उसमें भी, परिवार की जरूरतों को पूरा करना, उनके उन्हें खुश देखना, और क्या।
0: जी जी, बस उन्हीं की खुशी में हमारी भी खुशी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, मुझे मिल चुका है गीत आन मिलो सजना से, तो
0: जी
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: शुक्रिया जी, बहुत बहुत।

0: चलिए अब हमारी एक और श्रोता से जुड़ने का समय हो गया है। हेलो।
1: हेलो मैम।
0: जी हेलो। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और आपके उत्तम

0: स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश शिवा तालाब कर रहा हूँ। आप कैसी हैं?
1: जी बहुत बढ़िया। और आपने जो अपना इंट्रो दिया है ये सुन के मजा आ गया एकदम, और एकदम एनर्जी आ गई और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे श्रोता अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। बिल्कुल। और तो बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे युवाणी की तरफ से?
0: युवाणी में आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है रात और दिन
1: जी,
0: और गीत के बोल है दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ।
1: क्या क्या बात है, ऐसा लगता है कि आपको गाने का भी बहुत शौक है।
0: थोड़ा थोड़ा।
1: अच्छा अच्छा, तो मथुरा से आप बात कर रहे हैं और कैसा हाल है वहाँ पर, कैसा मौसम है और आप कैसे हैं? और मथुरा और वगैरह में तो अभी भीड़ भी बहुत ज्यादा हो गई होगी गर्मी के मौसम में, कई सारे टूरिस्ट वहाँ पर बहुत आते हैं।
0: जी जी, मथुरा वृंदावन एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ की लाखों लाख पर्यटक श्रद्धालु भक्त आते ही रहते हैं और प्रत्येक मौसम में यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। बहुत से श्रद्धालु भक्त आते हैं, यहाँ भ्रमण करते हैं, मंदिरों का देवालयों का दर्शन करते हैं, दिव्य अनुभूति और अभिभूत हो जाते हैं देखकर और उनके निहार कर।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: इस वक्त मथुरा में प्रचंड धूप होती है और गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, तापमान 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है और रात में 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी कि प्रचंड गर्मी हो रही है इस वक्त।
1: जी, बस हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ मानसून आए और मौसम बढ़िया हो। और अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है, अगस्त के महीने में अभी जन्माष्टमी।
0: जी जी जी, आई तो आषाढ़ लगेगा, आषाढ़ के बाद सावन, इसके बाद भादो में जन्माष्टमी।
1: जी जी, उस टाइम तो देखने लायक होता है मथुरा वृंदावन और सभी का मन करता
0: है कि एक बार वहां पर आए। यहाँ के हर गली मोहल्ला और सड़कें इतनी अच्छी सजी धजी रहती हैं और देवालय और शिवालय जो भी यहाँ पे है वो बहुत ही देखने लायक होते हैं।
1: जी जी,
0: और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में पूरा वृंदावन मथुरा होता है।
1: जी जी जी, चलिए फिर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत और बहुत बहुत धन्यवाद आज फोन करने के लिए।
2: High notes or low notes or this and there is nothing she would never be told as to what to do while singing. Who used to be told? I used to be told, but not her. She was never told. She never needed to be told.

0: तो दोस्तों ये था आज का युववाणी कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे दो प्रश्न पूछे थे, अब समय आ गया है कि हम उन दोनों प्रश्नों के आपको उत्तर बताएं।
1: और उसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न था कि कौन सी नदी कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भारत में दो बार काटती है, और इसका सही उत्तर है माही नदी।
0: और आज का दूसरा प्रश्न था कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को किस तिथि को अपनाया गया था, तो इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947।
1: हमें उम्मीद है आपने दोनों ही प्रश्नों के सही जवाब हमारे लिए ढूंढ कर रखे होंगे।
0: तो अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत मार्गेशा
1: और जयती को नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मोहम्मद रफी और चंद्रानी मुखर्जी की सुमधुर आवाज से। फिल्म का नाम है जुल्म की पुकार।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ में अहमद वसी का लिखा सी अर्जुन का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है कानून और मुजरिम।

आइए अब आपको सुनवाते हैं पेंटर बाबू फिल्म का गीत। कतिल शिफाई ने इस गीत को लिखा है, उत्तम सिंह जगदीश का संगीत है, महेंद्र कपूर की आवाज़।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विकसित होता भारत। प्रस्तुति है शिखा साहू की और प्रस्तुतकर्ता है डॉक्टर प्रीति छड़ीदार।
1: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: श्रोताओं, जब कोई युवा अपने सपनों को हौसले की मिट्टी में बोता है, तब केवल एक व्यवसाय नहीं जन्म लेता, बल्कि जन्म लेता है आत्मनिर्भर भारत का एक नया अध्याय। आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम और विजन 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में आकाशवाणी इंदौर का एक छोटा सा प्रयास, कार्यक्रम विकसित होता भारत, लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त शिखा साहू। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज 27 जून राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है, एक ऐसा अवसर जब हम उन लाखों छोटे छोटे उद्यमों को नमन करते हैं जिनके अथक परिश्रम ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां दी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई केवल उद्योग नहीं, बल्कि वे उन सपनों का विस्तार है जो किसी छोटे शहर, कस्बे या गांव से शुरू होकर पूरे देश की आर्थिक धड़कन बन जाते हैं। जी हां श्रोताओं, आज भारत के सकल घरेलू

उत्पाद में लगभग 30% योगदान इसी क्षेत्र का है। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र भी यही है। लाखों परिवारों की आजीविका, करोड़ों युवाओं के सपने और अनगिनत महिलाओं की आत्मनिर्भरता, इन सब की डोर कहीं न कहीं एमएसएमई से ही जुड़ी हुई है। श्रोताओं, वर्ष 2026 में भी भारत सरकार का उद्यमी भारत कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि सरकार केवल उद्योगों को बढ़ावा नहीं दे रही, बल्कि नवाचार, तकनीक और आत्मनिर्भरता की नई संस्कृति भी विकसित कर रही है। PMEGP 2.0 यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2.0, उद्यम पंजीकरण, PM विश्वकर्मा जैसी योजनाएं और भाषिणी जैसे डिजिटल पहल यह सुनिश्चित कर रही हैं कि देश का हर उद्यमी, चाहे वह किसी भी भाषा या क्षेत्र से हो, विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। जी हां श्रोताओं, आज भारत जब विकसित भारत 2047 के संकल्प की ओर बढ़ रहा है, तब MSME केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की शक्ति भी बन चुका है। हर छोटा उद्योग, हर नई इकाई, हर सफल उद्यमी विकसित भारत की इमारत की एक मजबूत ईंट है। किसी ने क्या खूब कहा है श्रोताओं कि छोटे छोटे दीप मिलकर ही उजियारा कर जाते हैं। वैसे ही छोटे छोटे उद्योग ही भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं। जब हर हाथ को काम मिलेगा, तब हर सपना साकार होगा और तभी विकसित भारत का स्वर्णिम भविष्य साकार होगा। तो श्रोताओं, आइए इस राष्ट्रीय MSME दिवस पर हम उन सभी उद्यमियों को सलाम करें, नमन करें, जो अपने साहस, परिश्रम और नवाचार से भारत की विकास यात्रा को निरंतर गति दे रहे हैं। श्रोताओं, विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर छोटा उद्यम बड़ी सफलता की कहानी लिखेगा। आज कार्यक्रम में राष्ट्रीय MSME दिवस के उपलक्ष्य में जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री स्वप्निल गर्ग जी से हुई बातचीत आपको सुनवाएंगे इस गाने के बाद।

0: श्रोताओं, कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि केवल उसके संसाधनों से नहीं बल्कि उन सपनों से तय होती है जिन्हें उसके नागरिक देखने और साकार करने का साहस रखते हैं। भविष्य अचानक नहीं आता श्रोताओं, यह वर्तमान के प्रयासों की नींव पर खड़ा होता है। वर्ष 2047 का विकसित भारत भी आज के उन्हीं संकल्पों, योजनाओं और कर्मठ हाथों का परिणाम होगा जो देश को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है जो उद्योग और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर और विकसित होते भारत के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम विकसित होता भारत में स्वागत करते हैं जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री स्वप्निल गर्ग जी का। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: सर, हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विजन 2047 की। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्षों को पूरा करेगा तो कैसा होगा उस समय का हमारा उद्योग जगत? तो सर, विजन 2047 को देखने का आपका क्या दृष्टिकोण है?
1: उद्योग के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं, बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है
0: जी,
1: मैं पिछले कई वर्षों से ऐसे युवाओं ने अपने खुद स्टार्टअप, अपने उद्यम, नए उद्यम स्थापित करके अपने ही पैरों पे खड़े होकर बैंक के माध्यम से लोन लेकर हमारी योजनाओं का लाभ लिया। और ऐसे कई हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने अपना ही उद्योग स्थापित किया और नौकरी ना करने से बेहतर उन्होंने नौकरी देने वाले बने।
0: जी जी जी।
1: ऐसी शासन की योजनाएं हैं जिसमें कई उद्यमी अपने पैरों पर खड़े हुए।
0: जी सर, मतलब आप भी चाहते हैं, आपका जो विभाग है वो भी यही चाहता है कि आज का युवा जो है वो नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। तो सर, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी कि इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं?
1: हमारे यहाँ केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का संचालन किया जाता है। इसके साथ ही हमारी स्टार्टअप पॉलिसी है जिसके तहत नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाता है। एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 के अंतर्गत नए उद्योगों को एवं पुराने उद्योगों को भी वित्तीय सहायता द्वारा लाभ दिया जाता है। साथ ही हमारे द्वारा अगर कोई नए शासकीय एवं निजी औद्योगिक क्षेत्र अगर निर्मित किए जाते हैं तो उनको भी प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे नए उद्योग स्थापित हो सके एवं नए युवाओं को रोजगार उपलब्ध किया
0: जाता है। जी सर, आज के युवा के पास बहुत सारे आइडियाज हैं, वो अपने नए नए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। तो ये जो स्टार्टअप संस्कृति हमारे देश में आई है, इससे हमारे देश का भविष्य किस प्रकार बदलेगा?
1: बहुत अच्छी बात है। ये मध्य प्रदेश में अभी तक जो हमारे स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं
0: जी,
1: इंदौर में तो 2451 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो चुके हैं जिसमें 50% हिस्सेदारी महिलाओं की है। स्टार्टअप तो महिलाओं द्वारा संचालित होते हैं। और अगर वर्ष 2024-25 में देखा जाए और 25-26 में, पिछले दो वर्षों में लगभग 1250 स्टार्टअप स्थापित हुए हैं और जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। तो कह सकते हैं कि युवाओं द्वारा नए आइडियाज, नए स्टार्टअप को रजिस्टर किया गया, ये नौकरी ना करते हुए नौकरी देने वाले बन रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप लेके आ रहे हैं। ये हमारे देश में एक बड़ा बदलाव है, प्रदेश में एक बड़ा बदलाव है।
0: जी सर, आपने जो आंकड़े बताए उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो आर्थिक भागीदारी महिलाओं की बढ़ रही है उद्योगों में खास तौर पर, तो ये भारत को कहाँ लेकर जाएगी? सर,
1: महिलाओं की जो भागीदारी लगातार हम हमारे विभागीय योजनाओं में जो देखी जा रही है
0: जी,
1: उनके द्वारा उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, स्टार्टअप के तहत भी उनके द्वारा अपने खुद के उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो स्टार्टअप में भी लगभग 50% हिस्सेदारी महिलाओं की है तथा हमारी विभिन्न योजनाओं में अगर लाभान्वित महिला उद्यमियों की भागीदारी देखी जाए तो 382 महिलाएं हैं जो पिछले दो वर्षों में लाभान्वित हमारी योजनाओं के माध्यम से की गई है। तो ये महिलाओं को एक प्रेरणा देती है, अपना अपने ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर अच्छा उद्योग चलाती हैं और इससे दूसरी महिलाओं को भी प्रोत्साहन मिलता है। कभी देखते हैं ऐसे हमारे कुछ प्रोग्राम और इवेंट होते हैं तो महिलाओं के आइडियाज देखकर हमारे विभाग और विभाग के अधिकारी भी अचंभित रह जाते हैं कि महिलाओं द्वारा इतने अच्छे अच्छे प्रयोग किए जा रहे हैं। फूड

0: प्रोसेसिंग में उनके द्वारा रेडी टू ईट को बहुत बड़े स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। काफी महिलाएं एक्सपोर्ट में भी अपना कमाल दिखा रही है, जो बताता है, दर्शाता है कि देश में महिलाओं द्वारा भी एक अलग तरह का माहौल बनाया जा रहा है जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण का एक रूप दिखाई
1: दे। जी सर, तो मुझे लगता है कि इस बातचीत को सुनकर जो दूसरी महिलाएं हमें सुन रही है ना, वो भी बहुत प्रेरित होंगी, और अगर उनके पास भी कोई बिजनेस आइडिया होगा तो वो आप लोगों से जरूर संपर्क करेंगे। अगर कोई युवा या कोई महिला अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं और वो आपके पास जिला उद्योग केंद्र में आते हैं, तो आप उनकी किस तरह से सहायता करते हैं सर?
0: यदि कोई महिला उद्यमी हमारे कार्यालय में संपर्क करते हैं, हमारे कार्यालय में आते हैं, तो सभी अधिकारी हमारे उपलब्ध रहते हैं, उनको सभी विभिन्न विभागीय योजनाओं का समझाया जाता है, बताया जाता है, उनकी प्लानिंग को समझा जाता है कि वो किस व्यापार या किस उद्योग में अपनी रुचि रखते हैं, उनकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग की जाती है, अगर बैंक से उन्हें लोन चाहिए तो बैंक से संपर्क कराया जाता है। इसके साथ ही अगर अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ जो प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि होती है, इंसेंटिव्स होते हैं, वित्तीय सहायता है, तो वो भी उपलब्ध कराने में उनकी पूरी मदद सहायता की जाती है। इसके साथ ही हमारी एक्सपोजर विजिट होती है, महिलाएं जिसमें अपना प्रोडक्ट को एग्जीबिशन के माध्यम से दूसरे राज्यों में भी अपने प्रोडक्ट को, और अभी अंतर्राज्य हमने एक्सपोजर विजिट की है, एक पिछले साल हमारी एक महिलाओं का लगभग 30 से 35 महिलाओं का ग्रुप हम हैदराबाद के फार्मा क्लस्टर में,
1: जी
0: मेल बेस्ड क्लस्टर है, वहाँ पे हमारे द्वारा 25 से 30 महिलाओं के ग्रुप को हमने उद्योगों का, हैदराबाद के उद्योगों का एक्सपोजर विजिट कराया, जिससे उनको काफी लाभ हुआ और उसके द्वारा बहुत अच्छा फीडबैक दिया गया महिलाओं द्वारा।
1: जी,
0: एक बड़ा उल्लेखनीय कार्य रहा है।
1: क्या बात है सर। हम बात कर रहे हैं जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री स्वप्निल गर्ग जी से, और सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके विजन में 2047 का भारत कैसा होना चाहिए?
0: मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष को हमने औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाया है, जिसमें कई ऐसे औद्योगिक गतिविधियां, जिसमें हमारे रीजनल लेवल पर राइस कॉन्क्लेव भी किए गए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, कई औद्योगिक क्षेत्र निर्मित किए गए, आगे ऐसे प्रपोज्ड हैं औद्योगिक क्षेत्र जो विभिन्न जिलों में विभिन्न विधानसभा स्तर पर भी औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हर क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हों और लोकल एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिले, जिससे माइग्रेशन रुकेगा, और इसके साथ ही हम लोकल टू ग्लोबल की तरफ भी जा रहे हैं, हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर विशेषता रखते हैं किसी स्थान की, तो उनका प्रचार प्रसार ग्लोबल लेवल पे हो, ऐसे भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही ODOP योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर प्रोडक्ट की विशिष्ट पहचान के लिए भी औद्योगिक क्षेत्र निर्मित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे कई निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक क्षेत्र निर्मित हो रहे हैं, तो आगे 2047 तक हमारे भारत में जो एम्प्लॉयमेंट का दर है, वो जिससे एम्प्लॉयमेंट का दर बढ़ेगा, साथ ही रेवेन्यू बढ़ेगा।
1: जी सर, इतना खूबसूरत और इतना समृद्धशाली विजन आपने हमारे देश का, हमारे भारत का दिया है ना, कि उसको सुनकर हमें एक उम्मीद जगती है कि भारत जो है वो लगातार सफलता की ऊंचाइयों पर यूं ही चलता रहेगा। सर, अगर अभी इस वक्त हमारे कार्यक्रम को कोई 18 साल का कोई युवा सुन रहा हो, तो विकसित भारत 2047 के निर्माण में वो अपनी क्या भूमिका निभा सकता है, उसके लिए आप क्या संदेश देंगे?
0: आज के युवा टेक्नोलॉजी से पूर्णतः अपने आप को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बोल सकते हैं।
1: जी,
0: हर प्रकार के गैजेट्स यूज कर रहे हैं, हर प्रकार के टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, AI का उपयोग बढ़ चुका है, तो अगर ये युवा अपने इस टैलेंट को अपने स्किल में बदले और अपना नया उद्योग में या नए उद्यम में, व्यापार में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, कुछ नया इनोवेशन लाते हैं, जो कि आज की डेट का युवा इनोवेटिव है, नए आइडियाज पे काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योर बनने की उनके अंदर एक इच्छा भी है, तो युवा आगे आए, नौकरी देने वाले बने, अपने उद्यम को शुरू करें। सरकार की विभिन्न योजनाएं इस दिशा में चलाई जा रही हैं, जो उनको हर समय उनको हर सहायता उपलब्ध, हर प्लेटफॉर्म पे हमारे द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आज का युवा बहुत उत्तेजित है, एग्रेसिव है, अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए युवा आगे आए और योजनाओं का लाभ लें।
1: जी सर, श्रोताओं, विकसित भारत केवल एक सरकारी लक्ष्य नहीं, बल्कि 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का साझा संकल्प है। आज की सार्थक चर्चा में हमने जाना कि कैसे उद्योग, नवाचार और आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव को और अधिक मजबूत बना रहे हैं। श्री स्वप्निल गर्ग जी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, आपने अपने बहुमूल्य विचारों से हमारे श्रोताओं को न केवल जानकारी दी, बल्कि भविष्य के भारत की एक प्रेरक तस्वीर भी दिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका।

0: आभार।
1: तो श्रोताओं, आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं जो समृद्ध हो, आत्मनिर्भर हो और पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बने।

परिंदा। श्रोताओं, अब बात डिजिटल इंडिया की। कहते हैं जब समय की धारा करवट लेती है तो केवल इतिहास नहीं बदलता, भविष्य की इबारत भी बदल जाती है। आज भारत ऐसी ही एक परिवर्तनकारी यात्रा का साक्षी है, जहां उंगलियों की एक हल्की सी छुअन से अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। जी हां श्रोताओं, बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की शक्ति की, जो आजकल बनी हुई है पावर ऑफ एम्पावरमेंट, यानी सशक्तिकरण की शक्ति। जी हाँ श्रोताओं, कभी गांव और शहर के बीच केवल दूरी नहीं थी, अवसरों की एक लंबी खाई थी। जानकारी कुछ लोगों तक ही सीमित थी, सेवाएं सीमित थी और सपनों की उड़ान भी सीमित थी। लेकिन आज डिजिटल इंडिया ने उस खाई पर तकनीक का एक ऐसा पुल बनाया है, जिस पर चलकर देश का सामान्य नागरिक भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। श्रोताओं, डिजिटल इंडिया केवल इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर का नाम नहीं है, यह उस विश्वास का नाम है जिसने आम नागरिक को व्यवस्था का केवल लाभार्थी नहीं बल्कि सहभागी बनाया है। आज सरकारी योजनाओं की जानकारी हो, बैंकिंग सेवाएं हो, ऑनलाइन शिक्षा हो या फिर टेलीमेडिसिन हो या फिर कोई डिजिटल भुगतान, हर सुविधा नागरिक के हाथों तक पहुंच रही है। आज किसान अपने मोबाइल से मौसम की जानकारी ले रहा है तो एक छात्र देश दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षकों से ऑनलाइन सीख रहा है। छोटे व्यापारी डिजिटल भुगतान के माध्यम से अपने कारोबार को नई दिशा दे रहे हैं और महिलाएं घर बैठे अपने उत्पादों को देश भर में बेचकर आत्मनिर्भर बन रही है। यह केवल तकनीक का विस्तार नहीं है श्रोताओं, बल्कि यह आत्मविश्वास का विस्तार है। डिजिटल इंडिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब तकनीक समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, तब विकास केवल आंकड़ों में नहीं जीवन में दिखाई देता है। जी हाँ श्रोताओं, यह अभियान हमें सिखाता है कि सशक्तिकरण का अर्थ केवल अधिकार देना नहीं बल्कि अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना भी है। श्रोताओं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां यहाँ अत्यंत सार्थक लगती है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज यही जोर ज्ञान का है, तकनीक का है और नवाचार का है, और यही वह शक्ति है जो सीमाओं को संभावनाओं में बदल रही है। डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तकनीक तभी अच्छी होती है जब वह मानवता के काम आए, जब वह किसी बुजुर्ग की पेंशन समय पर पहुंचा दे, किसी छात्र की पढ़ाई आसान बना दे, किसी किसान की मेहनत का उचित मूल्य दिला दे या किसी महिला को आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह दिखा दे। किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी श्रोता उसके भवन नहीं, उसके सशक्त नागरिक होते हैं। और जब ज्ञान, तकनीक और अवसर एक साथ मिलते हैं ना, तब केवल एक व्यक्ति नहीं पूरा देश आगे बढ़ता है। आइए श्रोताओं, डिजिटल इंडिया को केवल एक सरकारी पहल न माने बल्कि जन जन के सशक्तिकरण का आंदोलन समझे, क्योंकि डिजिटल भारत का अर्थ केवल स्मार्ट तकनीक नहीं बल्कि सशक्त नागरिक, समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत है। इसी विश्वास के साथ कि तकनीक का हर कदम भारत के हर नागरिक के जीवन में नई रोशनी लेकर आए और हमारे विजन 2047 को सशक्त बनाए, सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, विजन 2047 केवल एक सपना नहीं बल्कि यह बदलते विश्वास की कहानी है। यह उस भारत की कहानी है जहां अवसर अब दूरी नहीं देखते, जहां प्रतिभा अब सीमाओं को नहीं बांधे।

0: बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विकसित होता भारत। प्रस्तुति थी शिखा साहू की और प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार।
0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: मीडियम व्यू 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई चंद गजलें।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मधुसूदन भाटिया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस पारंपरिक लोकगीत से।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत में मधुसूदन भाटिया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

पल भर में भर भंडार दिया। पल भर में भर भंडार

भुजबल उसको दान दिया, ये जी भुजबल उसको दान दिया शिव।

0: लोक संगीत में आप सुन रहे थे मधुसूदन भाटिया के गाए मालवी लोकगीत।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशेल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए

0: भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के तीन कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम व्यू 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, आपको बता दें हमारी आज की सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में और 7:20 पर होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। 8:15 पर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर होगा चित्रगीत। रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 9:00 हमारे कल के कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सवेरे 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। 6:05 पर होगा 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। कल का विषय है संकल्प शक्ति। आलेख है आदित्य कुमार सोनी का और वाचक है मुकाम सिंह चौहान। 6:35 पर होगा कार्यक्रम खेती की बातें। इसमें आप सुनेंगे सोयाबीन की बुआई में पहले करें तैयारी। वाचक है भारती उपाध्याय। 6:40 पर श्री रामचरित मानस गान।

कल सवेरे 8:30 पर आप सुनेंगे कल के सितारे बच्चे हमारे। विषय है विद्यार्थी जीवन में योग और ध्यान के महत्व। सहभागी बच्चे हैं कृषिता जोशी, गाव्या भावस्कर और लक्षिता जोशी। 9:00 आप सुनेंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में छाया पगारे और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात।

9:30 पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे पंडित डीवी पलुस्कर का गाया राग तोड़ी। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा सवेरे 10 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 10:05 पर आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। कल दोपहर 11 बजे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम।

मीडियम व्यू 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को ही प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान करेगा स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। सेशल्स की राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा का उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविन्द्र भवन भोपाल में

0: आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़ रुपए की, विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा वृद्ध उद्योगों के लिए 1274 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा।
1: आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे, जिस प्रकार से हमारी गति चल रही हर एक क्षेत्र में, और केवल यहाँ नहीं, कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लूं तो जो हमने एमओयू किए थे और वो लगभग 9300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंच। हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी आगर मालवा में 3800 करोड़ का काम कर रही, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके पारिश्रमिक का अधिक से अधिक हिस्सा मिलेगा और यात्रियों को भी सुरक्षित तथा किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
2: मैं आज इस मंच से कह देना चाहता हूं, हम तो 1.5-2 साल में 500 से ज्यादा शहर में पहुंच जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, हर जगह हम पहुंच जाएंगे। हम नागपुर पहुंचेंगे, पुणे पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, 31-7 के पहले सातों स्थान पर भारत टैक्सी पहुंच जाएगी, और 2 साल के अंदर छोटे बड़े मिलाकर हम 500 शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर हमारे 2-व्हीलर, ऑटो और 4-व्हीलर का कंसेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में सिंहस्थ 2028 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अधोसंरचना विकास, विभिन्न विभागों की कार्ययोजना व समन्वित तैयारियों पर व्यापक मंथन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में विकास कार्य निरंतर जारी हैं। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जन समुदाय में इस अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। कटनी जिले में भी कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान जिले के 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी 1,73,700 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भिंड जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर

ली गई हैं, जिसमें 5 वर्ष तक के लगभग 2,70,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान को लेकर आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। नरसिंहपुर जिले में इस अभियान के अंतर्गत 1,58,945 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मंदसौर में अभियान के प्रति जागरूकता के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में पंचायत सांवेर की ग्राम पंचायत कदवाली बुजुर्ग में जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। मंदसौर में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जबलपुर के 2 प्रमुख कृषि उत्पाद मटर और सिंगाड़ा को भारत सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर खंडवा जिले के ग्राम बलखड़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में कल श्रमायुक्त संदीप GR ने माधव चौक का भ्रमण कर श्रमिकों से सीधे संवाद किया। आयरलैंड और भारत के बीच 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का 2रा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा ICJS कार्यान्वयन और डिजिटल एकीकरण विषय पर कल 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत पुलिस अभियोजन न्यायालय जेल फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य डिजिटल समन्वय और डेटा इंटर ऑपरेबिलिटी को सुदृढ़ बनाना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम व्यू 462.96 मीटर, एफ 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। निजी प्रस्तुति कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला मारा सभी किसान भाई बहनों का संध्या कोठारी को राम राम। न भाई हूँ आपको अपनों योजना कार्यक्रम में आप सब न को स्वागत है। भाई हूँ कामकाज तो खेतीबाड़ी में हम करता ज रहा और खेतीबाड़ी से संबंधित भी हमको कई ऐसी जानकारी ना कभी हमको रज और कभी नहीं भी रहती है जेका से हमको लाभ मिला। तो खेतीबाड़ी का काम करा लेकिन जानकारी ना भी रखा ताकि हमको कहीं भी योजना न हो तो उनको हम लाभ किस प्रकार से उठा ही सका। तो अगर जानकारी रहेगी भाई बहन तो हम निश्चित रूप से लाभ उठावांगा। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है या 18 फरवरी 2016 से शुरू करी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे कृषि मंत्रालय का कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा यह चलाई जा रही है। एक उद्देश्य है कि किसान न को प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि सूखो अकाल या कीट और न बीमारी न का कारण फसल का अगर नुकसान हो तो ओकासी उनका वित्तीय सुरक्षा या वित्त प्रदान करी सके कि किसान का कुछ तो पैसों मिली जाए ताकि वो अगली फसल जो है ओका करना में वो सक्षम रहे। एक लैंड हमका अगर यू कराण तो कोई ज़्यादा चीज न नहीं लगेगी जैसे कि आधार कार्ड बोई हुई फसल को प्रमाण पत्र जो हम कृषि या राजस्व विभाग से का कर्मचारी से ले सका या मालिक हो तो कासी घोषणा पत्र ले सका और बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी का जमा करना पड़ेगा। एकासी हमारी यह फसल बीमा हो जाएगा। अगर आपका कोई दिक्कत है या कुछ मुआवजा लेनो तो 31 जुलाई तक अपनी फसल को बीमा को फसल क्षति मुआवजा हम प्राप्त कर सकें। साथ ही में हम खरीफ फसल को बीमा पंजीयन कराना रबी को कराना सब फसल को अलग अलग पंजीयन की तारीख भी रहे और उनकी अंतिम तारीख भी रहे हमका हमारी फसल को बीमो कराने कलन। हमारा सभी किसान भाई नसी हम यू कहूँगा कि इन्हीं फसल बीमा को लाभ लेवा और अधिक इनका अगर सूचना चाहिए तो क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसलों को बीमो अवश्य कराड़ी ले। साथ में एक ही जानकारी कलन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस प्रतिनिधि या क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या समीपस्थ जो भी बैंक शाखा हो हमारी हम वहाँ जाए ना एक ही पूरी जानकारी ले लेवा। काई काई पेपर लगेगा वो पूछे लेवा कब हो किना किना तारीख अंतिम तिथि रहे ये सब जानकारी हम अरु ले ना इन्हीं बीमा को फसल बीमा को हम लाभ ले सकें। भाई हूँ ये तो हमने ली जानकारी न कार्यक्रम को हम आगे बढ़ावांगा। खरीफ फसल की तैयारी हमारा सभी किसान भाई बहनों ने करी ली होगी पर जो नहीं करी पाया वो सब तैयारी कसी करनी चाहिए ये सुना एक ही जानकारी दे रहा हमको नरेंद्र कुमार सोनी कृषि विस्तार अधिकारी ये रिटायर्ड छे खरगोन से छे इनका से सुना कि खरीफ फसल की तैयारी कसी करा।
1: तभी अन्नदाता किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सोहनी रिटायर्ड कृषि विस्तार अधिकारी ब्लॉक खरगोन जिला खरगोन से हूँ। किसान भाइयों खरीफ सीजन प्रारंभ हो गया है आज मैं आपको खरीफ सीजन के पूर्व की तैयारियों के बारे में जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे खेत के मिट्टी परीक्षण की। मिट्टी परीक्षण के लिए हमारे यहाँ पदस्थ कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें। कृषि विस्तार अधिकारी आपके खेत से नमूना लेकर प्रयोगशाला में भेज देंगे। जांच निशुल्क होगी। जांच परिणाम कार्ड आपको मिल जाएगा जिसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं कमी के साथ ही कौन सी फसल में कितना खाद डालना उसकी अनुशंसित मात्रा भी होगी। उसी हिसाब से आपको अपने खेत में खाद डालना है। किसान भाई अपने यहाँ उपलब्ध बैल चलित कृषि यंत्र जैसे हल बक्कर तिफन डोरा आदि को देख लें। उनमें कोई कमी बेसी हो तो उन्हें दुरुस्त करवा लें। ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर सीड ड्रिल प्लाऊ में कोई कमी हो तो उन्हें भी दुरुस्त करवा लें। जो भी फसल बोना है उसका प्रमाणित बीज की व्यवस्था कर लें। जहाँ से भी बीज लें उस दुकान से पक्का बिल अवश्य लें। जो भी बीज हमें बोना है उसकी जांच कर ले कि बीज का अंकुरण अच्छे से होता है या नहीं। इसके लिए 100 दाने लेकर एक गमले में बो दें और देख लें कि कितने दाने अंकुरित हुए हैं। फफूंदनाशी दवाई की व्यवस्था बीज उपचार हेतु कर लें, जहाँ से भी दवाई लें पील अवश्य लें। वैसे खरगोन जिले में काफ़ी किसान भाइयों ने गर्मी का कपास एवं खीरा लगा दिया है। इसके अलावा अन्य बीज बोने हेतु भी जमीन खाली है। रासायनिक खाद की उपलब्धता के लिए ई विकास पोर्टल या मोबाइल पर बलराम ई विकास

तो खेत में गोबर की अच्छी पकी खाद खेत में डाल दें, पश्चात बखर चला दें एवं पाटा फेर दें, जिससे कि खेत समतल हो जाए। इससे पानी की बचत एवं फसल की बढ़वार अच्छी होती। अच्छी बारिश होने पर ही अर्थात कम से कम 100 mm बारिश होने पर ही किसान भाई बोनी करें। अगर कुछ दिन बारिश नहीं भी हो आती है तो हमारी फसल सूखे नहीं। खेत में बीज बोने के पूर्व बीजोपचार अवश्य करें, पहले रासायनिक दवाई से फिर जैविक फफूंदनाशी जैसे ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार अवश्य करें। आधार खाद के रूप में स्फूर एवं पोटाश की 50% मात्रा का उपयोग बोने के पूर्व खेत में करें। इसके साथ ही कृषि विभाग किसान हितैषी अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है, जिसमें बैल चलित कृषि यंत्र जैसे निमाड़ी पंजी, मल्टी बखर, हल पर 50% अनुदान है, स्पाइरल सीड ग्रेडर, पावर स्प्रेयर पंप, हस्तचलित बैटरी वाले स्प्रेयर पंप, हसीए पर भी अनुदान उपलब्ध है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने पर स्प्रिंकलर, ड्रिप, पाइपलाइन, विद्युत पंप पर भी अनुदान मिलता है। बायोगैस संयंत्र निर्माण करने पर भी अनुदान मिलता है। प्रमाणित बीज भी अनुदान पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जैसे मक्का है, सोयाबीन है, ज्वार है, मूंग है, अरहर है, कपास आदि बीज अनुदान पर विभाग में उपलब्ध होता है। कपास फसल प्रदर्शन, मक्का का बीज, मूंग का बीज अभी कृषि विभाग के ब्लॉक कार्यालय में अनुदान पर उपलब्ध है। इन सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान भाई अपने कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क अवश्य करें। इसके अलावा किसान भाई प्राकृतिक खेती की ओर भी ध्यान दें। हमें न जहर खाना है और न खिलाना है। सिर्फ खेती नहीं, प्राकृतिक खेती से बदले खेती का भविष्य। कम लागत, ज़्यादा मुनाफा, स्वस्थ मिट्टी, सुरक्षित भविष्य। खेती की लागत 60-70% तक कम। रासायनिक खाद एवं दवाओं से मुक्ति। मिट्टी की उर्वरकता और पानी रोकने की क्षमता में वृद्धि। कम सिंचाई में बेहतर उत्पादन। जलवायु परिवर्तन से फसल सुरक्षा। आय और मुनाफे में वृद्धि। स्वस्थ और पौष्टिक भोजन। पर्यावरण और जैव विविधता में संरक्षण। अब प्राकृतिक खेती के मुख्य आधार क्या हैं? तो प्राकृतिक खेती के मुख्य आधार जो हैं जीवामृत है, बीजामृत, मल्चिंग, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, फफूंदीनाशक दवा, घन जीवामृत, टानिक शक्तिवर्धक दवा, नीमास्त्र की कीटनाशक। ये सारे जो दवाइयां हैं हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें गोबर की आवश्यकता होगी, गोमूत्र की आवश्यकता होगी, खेत के मेड़ की मिट्टी की आवश्यकता होगी, नीम की पत्तियों की आवश्यकता होगी, गुड़ की आवश्यकता होगी, बेसन की आवश्यकता होगी। इन सब सारी चीज़ों को मिलाकर हम ये सारी दवाइयाँ घर पर ही तैयार कर सकते हैं, जिससे हम खेत में डालकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अतः प्राकृतिक खेती से जुड़ें और आत्मनिर्भर खेती की ओर बढ़ें। सिर्फ संतुलित उर्वरक ही नहीं, बेहतर खेती के लिए हम ये तरीके भी अपनाएं।

0: जैसे खेत का समतलीकरण करें, जिससे पानी की बचत और फसल की बेहतर बढ़वार होती है। फसल और मिट्टी की जरूरत अनुसार संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें। पानी का सही और संतुलित उपयोग करें, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीक अपनाएं। जैविक खाद और फसल अवशेषों का उपयोग करें। मिट्टी की ताकत और उर्वरकता बनाए रखें। फसल चक्र अपनाएं, अंतर्वर्ती फसलें लगाएं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। इन उपायों से फायदा क्या है? मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ रहती है, पानी और खाद की बचत होती है, लागत कम और उत्पादन ज़्यादा होता है, फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है, किसान की आय बढ़ती है। सही खेती के सही तरीके अपनाएं, मिट्टी बचाएं, पानी बचाएं और पैदावार बढ़ाएं। इसके साथ ही किसान भाई को पशुपालन भी करें। पशुपालन करने से हमें दूध मिलेगा, गोबर मिलेगा, गोमूत्र मिलेगा। गोबर का हम बायोगैस संयंत्र में उपयोग करें, उससे जो स्लरी निकलेगी उसका उपयोग हम खेत में करें। धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, खरीफ फसल की तैयारी, देखो इतनी अच्छी अभी हमने वार्ता सुनी, जानकारी दे रहा था हमको नरेंद्र कुमार सोहनी, जो कि कृषि विस्तार अधिकारी था, इनका हम देवा बहुत बहुत धन्यवाद, इनने इतनी अच्छी हमको जानकारी दी। भाई हूँ लागत कम लगावा और फसल अच्छी लेवा और मुनाफो कमावा, या तो देखो हमको जानकारी होनी भी चाहिए और लेनी भी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो खास बात है हमारी वह है कि हमको प्राकृतिक खेती बहुत ज़रूरी छे करनो, क्योंकि जबज हमारी जो मिट्टी छे ज़्यादा समय तक ज़्यादा दिन तक उपजाऊ बनी रहेगी। तो भाई हूँ देखो, या तो अभी हमने वार्ता सुनी ना, अब सुनागा एक लोकगीत, एक गायो हेमलता उपाध्याय ना।

0: धन्य धन्य हो नर्मदा मैया, असी नर्मदा असी नदी हमारी जेका दर्शन मात्र से हमको पुण्य की प्राप्ति हो। इतो बढ़िया यो लोग भी सुनायो हमको हेमलता उपाध्याय अना साथी नाना। कार्यक्रम का हम आगे बढ़ावांगा और अब मौसम जो छे वो भी बहुत ज अच्छो हो गयो कि जेका बिना हमारो जीवन है नहीं अपन यो कहवा वो छे पर्यावरण। तो इना पर्यावरण का सुधारण का लेन भी हमारो समय बहुत अच्छो छे। नदी नाला तालाब नक भरनू और वृक्ष नक लगाणू और हम तो हमेशा ज कवान और सबज लोग कहता रहे कि पर्यावरण का सुधारण का लेन हर व्यक्ति यो संकल्प ले कि हर साल 5 वृक्ष जरूर लगावे तो देखो पर्यावरण भी अच्छो रहेगा और पर्यावरण का साथ साथ हमारो जीवन एकदम सुरक्षित रहेगा। तो असी हम कविता पाठ सुनांगा पर्यावरण पर केंद्रित। कवि छे हमारा धन्नालाल चौधरी।
1: आप देश सेवा में सर्वप्रथम हैं और मैं आज आपके ही संबंधित नदी नाले जंगल में मंगल ऐसे विषय से संबंधित रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जंगल में मंगल। झरनों के नाद नदियों के निनाद से, झरनों के नाद नदियों के निनाद से वन आनंद विभोर, ऊंचे पर्वत शिखरों से झरते नीर का गुंजन है घनघोर। प्राकृतिक संगीत की धुन पर खूब थिरकते हैं खरमोर। जंगल में मंगल है, जंगल में मंगल है, वन्य जीव नृत्य करते हैं भाव विभोर। झरनों के नाद नदियों के निनाद से वन आनंद विभोर। जीव जगत का अभिनंदन करता, जीव जगत का अभिनंदन करता, सुहाना भव्य भोर। उदयमान भानु की दिव्य लालिमा है चकित चित चोर। वन्य जीव झीलों में स्नान

कर चलते सूर्य दर्शन की ओर, सुनहले सूर्य को आलोक के, सुनहले सूर्य को आलोक के सब हो जाते हैं भाव विभोर। झरनों के नाद, नदियों के निनाद से वन आनंद विभोर। तटों पर जलपान करते हैं पशु पक्षी खुशी से सराबोर, तटों पर जलपान करते हैं पशु पक्षी खुशी से सराबोर। टिटिहरी शत्रुओं से सचेत करती, टिटिहरी शत्रुओं से सचेत करती छटा बिखेरते मोर। बुलबुल मधुर गीत गाती है, बुलबुल बुलबुल मधुर गीत गाती है, डालियों पर लेती हिलोर। उल्लू रजनी में घूम घूम कर, उल्लू रजनी में घूम घूम घूम कर रखवाली करता है चकोर। तीरों के पेड़ हैं, तीरों के पेड़ हैं वन जीवन के विश्राम के ठिकाने ठोर। यामिनी में, यामिनियों में दुमों पर घरी नींद सोते विहंग घोर घोर। थपकियां दे समीर सुलाती, थपकियां दे समीर सुलाती निस्तब्ध निशा में नहीं सोर। कभी कभी घुसपटिए पक्षी नींद चुराने आ जाते हैं चर, कभी कभी घुसपटिए पक्षी नींद चुराने आ जाते हैं चोर। वर्णों झरनों के नाद, नदियों के निनाद से वन आनंद विभोर। ऊंचे पर्वत शिखरों से झरते नीर का गुंजन घनघोर। कानन में प्राकृतिक संपदा का साम्राज्य है, कानन में प्राकृतिक संपदा का साम्राज्य है चारों ओर। विपिन में वन्य प्राणियों का लावण्य है बहुत चितचोर, विपिन में वन्य प्राणियों का लावण्य है बहुत चितचोर। प्रदूषण से दूर, प्रदूषण से दूर सकल वनवासी, प्रदूषण से दूर सकल वनवासी सुख चैन से सराबोर। धवल जंगल सहेजे, धवल जंगल सहेजे यह वनदेव है सचिदानंद का ठोर, यह वनदेव है सचिदानंद का ठोर। झरनों के नाद, नदियों के निनाद से वन आनंद विभोर। ऊंचे पर्वत शिखरों से झरते नीर का गुंजन घरघोर। प्राकृतिक संगीत की धुन पर खूब थिरकते हैं खरमोर। जंगल में मंगल है वन्य जीव नृत्य करते हैं भाव विभोर। अब मैं दूसरी रचना पाठ करने जा रहा हूं, आकाश है चराचर का बास, आकाश है चराचर का बास। शून्य है सुनसान है, शून्य है सुनसान है आसमान है मात्र विश्वास। खाली स्थान रिक्त स्थान को, खाली स्थान रिक्त स्थल को कहते हैं आकाश। गगन दर्शन से होता है, गगन दर्शन से होता है नीले रंग का आभास। किंचित नहीं है, किंचित नहीं है आकाश, तथापि है यह खास। अंबर में अनंत काल से, अंबर में अनंत काल से है ग्रह नक्षत्रों का वास। आकाश आश्रय में लुभाता पिंडन का विलास। नभ में हलचल है ब्रह्मांडों का अनुपम लास। मोहता है टिमटिमाते तारों का भव्य प्रकाश। शून्य है सुनसान है आसमान है मात्र विश्वास। खाली स्थान रिक्त स्थल को कहते हैं आकाश। आसमान में आसमान अचल है, आसमान अचल है सकल ग्रहों के आसपास। विशाल पंडाल तना है समस्तों पिंडों के पास, विशाल पांडाल तना है समस्त पिंडों के पास। कदम सुंदरा पर, कदम सुंदरा पर ऊपर है निरुपम आकाश। नभ में सकल चलते फिरते हैं, नभ में सकल चलते फिरते हैं यह है अविनाश। शून्य है सुनसान है आसमान है मात्र विश्वास। खाली स्थान रिक्त स्थल को कहते हैं आकाश। व्योम में प्राणी चलते फिरते बढ़ते मिलता है उजास। क्षितिज में नव, क्षितिज में जीव जगत लेता है सुख से सांस। व्यापक व्याप्त आकाश अगजग का आवास, व्यापक व्याप्त आकाश अगजग का है आवास। गगन से अस्तित्व है, गगन से अस्तित्व है यह है चराचर का आवास, यह है चराचर का आवास। शून्य है सुनसान है, शून्य है सुनसान है आसमान है मात्र विश्वास। खाली स्थान रिक्त स्थल को कहते हैं आकाश। अन्य रचना में प्रस्तुत करने जा रहा हूं सावन मन भावन, सावन मन भावन। सावन का आवन, सावन का आवन सुनसान, सावन का आवन सुन गदगद हो जाता है मन। सावन का आवन सुन गदगद हो जाता है मन। शीतल मंद फुहार प्रफुल्लित करती है जनजन। रिमझिम रिमझिम वर्षा गुदगुदाती है जनतन, रिमझिम रिमझिम वर्षा गुदगुदाती है जनतन। पानी की झड़ी में, पानी की झड़ी में उछल बच्चे करते हैं अवगाहन। सावन का आवन सुन गदगद हो जाता है मन।
शीतल।

0: फुहार प्रफुल्लित करती जन जन। पोखर सर सरिता में लबाब होता जल दर्शन, पोखर सर सरिता में लबाब लब होता जल दर्शन, नदियों में नद नदियों में नीर का तेज प्रवाह होता है सनन, नद नदियों में नीर का तेज प्रवाह होता है सनन, ये स्वयं जल वितरण करके होते हैं बहुत प्रसन्न, ये स्वयं जल वितरण करके होते हैं बहुत प्रसन्न, वसुंधरा को करते हैं हरा भरा, वसुंधरा को करते हैं हरा भरा, अनुपम व संपन्न, सावन का आवन सुन गदगद हो जाता है मन, शीतल मंद फुहार प्रफुल्लित करती जन जन। दिग दिगंत में हरिता का साम्राज्य, दिग दिगंत में हरिति का साम्राज्य, धरती से गगन हरियाली से अच्छित आनंदित करते कानन, वन्य प्राणी टोली चलती है सैर करने को सुंदर वन, वन्य प्राणी टोली चलती सैर करने को सुंदर वन, निहार कर मुग्ध हो जाते हैं विपिन वैभव पावन, लहलहाती फसलें देख वसुधा पुत्र होते हैं मगन, दयानिधि की दया पर निर्भर है किसान जीवन, प्रकृति के सानिध्य में पुलकित रहते हैं आजीवन, धवल अति मंगलकारी सर्वश्रेष्ठ है महासावन, धवल अति मंगलकारी सर्वश्रेष्ठ है सावन, सावन का आवन सुन मन गदगद हो जाता है मन, शीतल मंद फुहार प्रफुल्लित करती जन जन। नमस्कार
1: किसान भाइयों, अभी पर्यावरण पर केंद्रित हमने इतनी अच्छी कविता सुनी। कवि था हमारा धन्नालाल चौधरी। न कार्यक्रम को आगे बढ़ावांगा सुनांगा एक लोकगीत, एक गायो गोविंद सिंह धनगरना।

अभी हमने यो लोक गीत सुनियो, एक गायो थो गोविंद सिंह धनगर ना। हमारा सवाई किसान भाई बहन वाट जो ही रहा होगा कि आज शनिवार को दिन छे ना, रामायण पाठ तो जरूर होएगा। तो हम सुना रामायण पाठ एक स्वर से सजायो मुकेश ना।

किशन भाई अभी हमने रामायण पाठ सुनियो, एक गायो थो मुकेश ना ना वो घड़ी बतेरी की कार्यक्रम को समय भी समाप्त हुए रोज। हमारा सभी किसान भाई बहन से लूंगा विदा, ने कहूंगा राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में, भोपाल केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। मध्य प्रदेश है, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया।
2: नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है, मैं हूं विशाल दहिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मेनी ने उनका स्वागत किया और एक शीर्ष वार्ता वहां के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे, जो कि ऐसा पहला मौका किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की यह सेशल्स की पिछले 12 साल में दूसरी यात्रा है। इससे पहले सन 2015 में प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स गए थे। भारत और सेशल्स के संबंध बहुत ही मधुर रहे हैं और दोनों ही देश 50 वर्ष भी मना रहे हैं अपने राजनयिक संबंधों को लेकर। तो आज हम चर्चा करेंगे ना केवल भारत और सेशल्स के संबंधों की, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के महत्व की भी, खासतौर पे जो इस वक्त वैश्विक स्थिति है उसके चलते, और भारत के लिए सेशल्स कितना महत्वपूर्ण है और सेशल्स के लिए भारत की क्या अहमियत है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: सबसे पहला सवाल जो मन में आता है जब हम सेशल्स की बात करते हैं, और मैं सीधा वहीं से शुरुआत करूंगा, वो है मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि भारत और सेशल्स के जो संबंध हैं उसमें कई और पहलू भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैरिटाइम सिक्योरिटी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब नई दिल्ली से रवाना हुए थे तो उन्होंने अपने वक्तव्य में इस मुद्दे को लेकर काफी जोर शोर से अपनी बात रखी थी। कहा था महासागर जिसकी हम बात करते हैं मिस्टर सज्जनहार, तो महासागर से क्या इंडिकेशन मिलती है और उसमें सेशल्स का क्या महत्व है?
3: देखिए, आपने बिल्कुल ठीक जगह से शुरू किया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो सेशल्स का क्या महत्व है महासागर के परिपेक्ष में, क्योंकि हमें देखना है न केवल भारत और सेशल्स के द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं, परंतु इसको अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में देखने की बहुत आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष ऐसा है, बहुत बदलाव आया है, बहुत उथल पुथल हो रही है। और अगर हम इंडियन ओशन का क्षेत्र देखें तो उसमें भी हम देखते हैं बहुत ही, भारत तो कहता है ये भारत यहाँ पर मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, परंतु और भी यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि आने लगे हैं और बहुत ही अपना यहाँ पर प्रभुत्व वो जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 2015 में जब वो मॉरिशस गए थे तो उन्होंने सागर का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया था, जिसका मतलब है सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मतलब सभी की सुरक्षा, सभी का जो वृद्धि है, जो भी उनका आगे ले जाना है, ग्रोथ है, प्रगति है, सभी को साथ में लेकर यहाँ पर चलने की आवश्यकता है। परंतु उसका परिपेक्ष केवल इंडियन ओशन था। फिर उसके बाद पिछले साल उन्होंने महासागर को भी मॉरिशस में ही लॉन्च किया, और उसका है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। मतलब इसको और ज्यादा व्यापक बना दिया गया है। अगर सागर केवल इंडियन ओशन भारतीय भूसागर से ही मिलता जुलता था, उसके परिपेक्ष में आता था, तो महासागर है, इसका जो दायरा है कहीं और बढ़ गया है। और सेशल्स इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जो हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ट्रेड है, जो कनेक्टिविटी है, उसमें बहुत ही उसका ज्यादा महत्व हो गया है। और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है जो आगे चलते हुए दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो मैरिटाइम सिक्योरिटी है, मैरिटाइम डिफेंस है, सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से, और इसके ऊपर पहले भी दोनों देशों में बहुत अच्छी सहमति है। जब डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी भारत आए थे इस साल फरवरी में, तब भी इसके बारे में बहुत बातचीत हुई थी, तो अब इसको आगे इसमें ले जाया जाए।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने एम्बेसडर सज्जनार, क्योंकि जो भारत है उसने सेशल्स के कई मुख्य द्वीपों पर कोस्टल सर्वेलेंस राडार सिस्टम भी स्थापित किए हैं, यानी कि तटीय रक्षा प्रणाली जो है उसको मजबूत करने में दोनों देशों के बीच जो मधुर संबंध हैं, जो गहरे संबंध हैं, वो काम आते हैं। उसके अलावा अगर हम पायरेसी की बात करें, यानी कि जिन जिन शिपिंग लेन्स की आपने बात की, समुद्री सुरक्षा की बात की, तो एंटी पायरेसी जो स्टेप्स हैं, जो एंटी पायरेसी कैंपेन जो है उसमें भी दोनों देशों के बीच काफी गहरा समझौता है, और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी गाहे बगाहे कई बार दोनों देश कर चुके हैं। तो ये इस इतिहास से देखा जाए तो पहले सागर और उसके एक दशक बाद अब महासागर, यानी कि एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं सेशल्स के साथ जो हमारे संबंध हैं और हमारा जो समझौता है, खासतौर पे तटीय सुरक्षा को लेकर और जो समुद्री सुरक्षा जिसे कहा जाए उसको लेकर भी। लेकिन इसके अलावा एक और पहलू है मिस्टर सज्जनहार, और हम उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि भारत ने बड़ा दिल रखते हुए कई बार कई तरह से सेशल्स की मदद की है। चाहे हम अगर कोविड 19 के दिनों से देखें, जिस तरह से हमने पेंडेमिक के दौरान कई और देशों के साथ साथ सेशल्स की भी मदद की, हमने वैक्सीन्स पहुंचाई, उसके अलावा खाद्य सामग्री पहुंचाई, और हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले एक $175 मिलियन का आर्थिक पैकेज भी सेशल्स को दिया गया था। तो वहां सेशल्स में इसको किस तरह से देखा जाता है, भारत की जो इमेज की अगर हम बात करें तो किस तरह की इमेज भारत की है?
3: देखिए, भारत की इमेज मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में ही बताया है, जो भारत के संबंध हमारे बहुत ही ऐतिहासिक हैं, बहुत ही पुराने हैं। वहां पर 1770 में हमारे 5 वहां पर जिसे कहा जाए वर्कर्स गए थे, लेबर गए थे, काम करने के लिए गए थे, कोई फ्रेंच कॉलोनियलिस्ट उनको वहां पर ले गए थे, और वो पहले भारतीय लोग थे जो वहां पर हैं, और हमारा बहुत ही तब से बहुत ही संबंध उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। इस समय देखा जाए तो करीब 6,000 हमारे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हमारा जो डायस्पोरा है उसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं करीब 6,000 हैं, करीब 10,000-11,000 वहां पर प्रोफेशनल्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वगैरह। आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए भारत ने हमेशा सेशल्स की मदद की है, सहायता की है, और इसके लिए बहुत ही आभारी है, सेशल्स अपने को मानता है, क्योंकि पहले हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, उसमें अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं ये भी कहूंगा
2: जी।
3: जो देखिए हमने बहुत वहां पर पेट्रोल वेसल्स दिए हैं उनको, जिससे कि वहां पर अपनी वो पेट्रोलिंग कर सके। आपने रेडार सिस्टम्स का तो बताया ही है, जो कोस्टल तटीय इलाकों में हमने उनको स्थापित किया है, अभी हमने 6 वहां पर तटीय इलाकों पर हमने ये एस्टैब्लिश किए हैं, स्थापित किए हैं, जिससे कि जो कोई वहां पर अगर उनकी संप्रभुता के ऊपर कोई वहां पर आते हैं तो उनको पहले ही पता चल जाए उसके बारे में। फिर दूसरी बात है, हमने 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिए हैं उनको। इस प्रकार के बहुत सारे उनको हमने सामान दिया है, जिससे कि अपनी सुरक्षा को वो बड़ी

0: अच्छी तरीके से निभा पाए। उसके साथ हमारी एक्सरसाइजेस चलती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे वो लिमत, ये एक्सरसाइजेस हर दो साल में एक बारी होती हैं। तो मैं कहूंगा बहुत वहां पर काम किया गया है। हमारी जो नेवल शिप्स हैं, INS सुनैना है, INS शारदा है, उन्होंने वहां की उसके एरिया के लिए, तटीय इलाकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह की है। तो बहुत काम दोनों देश एक साथ करते हैं और इसमें वहां के जो लोग हैं वो भारत के बहुत ही आभार मानते हैं। हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा है, हालांकि उसको और बढ़ सकता था तो, परंतु आपने जो अभी जिक्र किया है $175 मिलियन का, वो जब डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी आए थे यहाँ पर फरवरी में,
1: जी बिल्कुल,
0: तो तब उन्होंने उस समय ये पैकेज लोन भी है और ग्रांट का पैकेज है जो कि दिया था हमने उन्हें, और उसमें जो बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे वहां पर कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, वहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र में, वहां पर शिक्षा क्षेत्र में, ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जिसमें दोनों देशों ने कहा जो वहां पर काम किया जाएगा। आपने COVID-19 का विशाल जी अभी जिक्र किया
1: जी।
0: और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था दोनों देशों के बीच के संबंधों को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि सेशेल्स मेरे विचार से दुनिया में करीब सबसे पहला देश रहा होगा जहां पर कि हमने 50,000 अपने वैक्सीन डोजेज वहां पर भेजे, क्योंकि हमारे यहाँ आपको याद होगा करीब 2021 में बिल्कुल शुरुआत में जनवरी में 16 जनवरी को हमने अपना टीकाकरण शुरू किया और फिर 21 जनवरी 4-5 दिन बाद ही हमने सेशेल्स के लिए भी करीब 50,000 डोजेस भेज दिए थे। उनकी जनसंख्या ही अगर देखा जाए तो करीब 1,00,000 के आसपास है, छोटा देश है, छोटी जनसंख्या है
1: जी,
0: परंतु भारत उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है, अपने संबंधों को बहुत ध्यान से उसको आगे लेकर जाता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैरिटाइम पार्टनर है और उस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए जैसे हम बात कर रहे थे पायरेसी की, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत करीब 90% हमारा जो व्यापार है
1: जी,
0: वो हम इन्हीं समुद्र से ही हम उसको आगे लेकर चलते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर सज्जनहार, केवल सुरक्षा के लिहाज से नहीं, केवल सैन्य उपकरण नहीं, बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करने में भारत का काफी योगदान रहा है सेशल्स में, चाहे वो वहां की मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग हो, वहां पर ऊर्जा संयंत्र हो, या फिर और कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं जिनका आपने जिक्र किया। एक आखिरी सवाल और मिस्टर सज्जनहार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद हैं, उनका 50वां स्वतंत्रता दिवस है यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, उसके बाद वो नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे और शीर्ष स्तर पर वार्ता भी होगी, तो इस यात्रा से आपको क्या लगता है कि दोनों देशों के लिए क्या वो 2 या 3 बड़ी बातें हैं जो उभर कर सामने आ सकती हैं?
0: देखिए, एक तो मेरे विचार से भारत न केवल सेशेल्स को अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए, परंतु पूरे जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें ये एक संदेश भेज रहा है जो भारत का यहाँ पर जो संबंध है, जो प्रभुत्व है, वो बिल्कुल ही बरकरार है और उसको वो बिल्कुल भारत जो है उसको पूरी तरीके से प्रिजर्व करके रखेगा। तो कोई ये जैसे हम देख रहे हैं चीन की तरफ से इतना ज्यादा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो मालदीव्स के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा हो, श्रीलंका के साथ आगे बढ़ा रहा हो, तो किसी को ये शक, चाहे वो ग्वादर में आ गया हो, जिबूती में आ गया हो, तो किसी को ये शक शुभ नहीं होना चाहिए जो भारत और देशों को यहाँ पर अपने इस क्षेत्र में आकर किसी ना किसी प्रकार की कुछ ऐसी कार्रवाई करने का की अनुमति देगा। तो इसका भारत के यहाँ पर जो भी देश है उनके साथ संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत ही अटूट है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही गहरा है। एक तो ये संदेश बिल्कुल सीधा है, दूसरा है चाहे देश छोटे हो परंतु भारत उनके साथ, जो भारत के मित्र हैं उनके साथ वो बिल्कुल मिलकर काम करेगा और उनकी सब पूरी तरीके से सहायता करेगा। आखिर में यही कहना है, जब भारत बढ़ता है, भारत की प्रगति होती है, भारत समृद्धिमान बनता है, तो ये केवल भारत के लिए फायदा नहीं है परंतु जो हमारे क्षेत्र के देश हैं इन सभी के लिए फायदा है और भारत सभी के साथ मिलजुल के काम करना चाहता है। उसी को हमने सागर का पहले रूप दिया और उसी को हमने फिर और बढ़ाकर महासागर का रूप दिया है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर सज्जनहार। जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है सेशल्स की और भारत और सेशल्स के बीच जो प्रगाढ़ संबंध रहे हैं पिछले 50 सालों से, उनकी समीक्षा करने के लिए और श्रोताओं को ये बताने के लिए कि किस मार्ग पर यानी कि किस दिशा में भारत और सेशल्स के संबंध अब आगे बढ़ने वाले हैं और क्यों दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्व रखते हैं।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, जिसे हमने आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया। लीजिए प्रस्तुत है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। सभी रसिक श्रोताओं को मोना ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार।

मोहब्बत। मोहब्बत एक ऐसा एहसास जिसे न कभी किसी भाषा की ज़रूरत पड़ी और न ही किसी परिचय की। कभी यह पहली नज़र की मुस्कान बन जाती है तो कभी बरसों के इंतज़ार का सुकून। और जब इस एहसास को सुरों का साथ मिल जाए तो जन्म लेते हैं वो गीत जो समय की सीमाओं से परे हो जाते हैं। आइए आज इसी मोहब्बत के अनगिनत रंगों को महसूस करते हैं कुछ सदाबहार फिल्मी नगमों के साथ।

कहते हैं प्रेम की शुरुआत आँखों से होती है, लेकिन उसकी मंजिल दिल में ही होती है। कुछ रिश्ते बिना किसी वादे के पूरी उम्र निभा लिए जाते हैं, और मोहब्बत में सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई आपका हाथ थामे या ना थामे, बल्कि जब भी वो आपका हाथ थामेगा आपका वक्त बदल जाएगा और हाथ कभी नहीं छूटेगा।

मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता, ये बरसात की पहली बूंद में भी मिलती है और सर्द रात की खामोशी में भी। ये शिकायत भी करती है, मनाती भी है, और जब सच्ची होती है तो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है।

कोई आपके साथ कितनी देर रहा, बल्कि ये होती है कि उसके जाने के बाद भी उसकी याद आपके भीतर कितनी देर तक रही। कुछ रिश्ते किताबों में नहीं लिखे जाते, वे दिल के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। मोहब्बत सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि दिल की वो खामोश जुबान है जिसे सुनने के लिए कान नहीं एहसास चाहिए। कभी ये किसी की मुस्कान में बस जाती है, तो कभी किसी की याद में उम्र भर महकती रहती है। आइए आज के सुरीले सफर में मोहब्बत का एक और नगमा आपकी नज़र।

कहते हैं मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो शब्द कविता बन जाते हैं, खामोशी संगीत बन जाती है और इंतज़ार जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि वो कभी उम्र नहीं पूछती। बचपन की मासूमियत से लेकर बुढ़ापे की झुर्रियों तक अगर कुछ साथ चलता है तो वो है किसी अपने का साथ और उसी अपने की याद।

एक लेखक ने लिखा था कि एक बूढ़े सज्जन हर सवेरे अपनी पत्नी से मिलने वृद्धाश्रम जाते थे। किसी ने पूछा कि जब उन्हें अब आपकी पहचान भी नहीं रही तब भी आप रोज़ क्यों जाते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा था कि उन्हें शायद याद ना हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे तो याद है कि वो कौन है। शायद यही मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप है, जहाँ याद से ज़्यादा निभाया जाता है प्यार के मायने को। कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता कभी शब्दों का मोहताज नहीं होता। एक बार, एक नज़र, एक मुस्कान या एक खामोशी वो सब कुछ कह जाती है जो पूरी किताब भी नहीं कह पाती।

मोहब्बत में जीत या हार नहीं होती, बस एहसास होते हैं। कुछ लोग मंजिल बन जाते हैं, कुछ यादें, लेकिन दोनों ही जिंदगी को खूबसूरत बना जाते हैं। इश्क की दास्तानें बदलती रहती है, लेकिन कभी प्रेम का संगीत पुराना नहीं होता। सदियां बीत जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, मगर दिल की धड़कनों में बसे ये सदाबहार गीत हर दौर में उतने ही ताज़ा लगते हैं। इन्हीं भावों के साथ आज की ये संगीतमय महफिल, यानी कि आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, इससे इजाज़त दीजिए। मोना ठाकुर को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और ठीक 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ @9। प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब

0: चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. So MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
4: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एबीसी मेन्स वॉलीबॉल

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे जिद्दी फिल्म का ये बेहतरीन नगमा। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था, एस डी बर्मन का संगीत था।

राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम था शादी। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रगीत।

सोनू निगम की। इसी के साथ ही चित्रगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है एक सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटीज, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश, उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब वो रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं
1: जी।
2: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक

0: एक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी की उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं, सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहाँ पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूँ इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊँ, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है। जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और फिर डेथ हो गई, तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसकी बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरिएट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहां पर ला करके

0: में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है।
1: जी
0: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम से पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देता। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बात जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहें। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर सकते, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं। भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पर हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में केनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ। उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
3: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना

0: बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती हैं। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा, और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर GV राव, इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर GV राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुँचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटी

0: جس میں رہتا تھا ابھی تو گاؤں گاؤں پھیل چکا ہے. ابھی ایک گیسٹرو انٹرالوجی جو اسپیشلٹی ہے, بہت میڈیکل اور سرجیکل جو اسپیشلٹی ہے, اس میں جو انتی ہوئی یہ انڈوسکوپی, لاپروسکوپی, روبوٹک سرجری, یہ تین اسپیشلٹیز کی وجہ سے سرجریز بہت منیملی انویزیو ہو گئے اور ریکوری بہت ہو گیا. سمجھو آج ایکچولی میجورٹی انڈیا میں جو فیملی جو رہتے ہیں ان کا فیملی میں ایک بریڈ ونر رہتا ہے. اگر یہ آدمی کوئی بیماری سے کام پہ نہ جائے تو ساری کے ساری فیملی افیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ منیملی انویزیو جو انڈوسکوپی ہو, لیپروسکوپی ہو یا روبوٹک سرجری ہو, اس کے وجہ سے جو بھی چکتسا کرے آدمی جلد سے جلد ریکور ہو کے اپنے کام پہ لگ جاتا ہے. سو اس سے وہ بہت آسان ہو گیا کہ دا فیملیز آر ناٹ گیٹنگ افیکٹڈ ناؤ بائی دس. وی گو تھرو ریگولر میڈیکل چیک اپ, جو بھی ڈیٹا ہے ہم تو, میں تو ایک آدمی ہوں, میں تو میرا پورا ڈیٹا ہے, انفیکٹ میں تو بولتا ہوں میرا ایک ڈیجیٹل ٹوین ہے ہاسپٹل میں, جو بھی میرا ڈیٹا ہے پورا اس میں ریکارڈڈ ہے. تو دیٹ ٹیکس کیئر آف مائی دس تھنگ ایکچولی.
1: تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت دھنیہ واد. پدم شری سے سمانت ڈاکٹر جی وی راؤ, سرجیکل گیسٹرو اینٹرولوجسٹ نردیشک اے آئی جی اسپتال حیدرآباد سے چکتسا شیتر میں تکنیک اور نواچار وشے پر ہمارے ساتھ جانکاری ساجھا کر رہے تھے. شروتاؤں, اب بات کرتے ہیں جون 2026 میں وگیان اور انترکش جگت کی کچھ پرمکھ گھٹناؤں کی جنہوں نے پوری دنیا کا دھیان اپنی اور آکرشت کیا. سب سے پہلے بات ناسا کے بہو پرتیکشت نینسی گریس رومن اسپیس ٹیلیسکوپ کی. 21 جون 2026 کو یہ अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई. इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी. इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सो प्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है. अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की. 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया. इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है. वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं. ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है. अब रुक करते हैं मंगल की ओर. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी. इन चित्रों के से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं. भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है. जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की. ये उपलब्धियाँ भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की. 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्त ग्रीष्म अयनांत मनाया गया. इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा. वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया. निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ. तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति. उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा. अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ. आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी. वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा. मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में. नमस्कार.

0: सात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनिशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्वरी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिन्स हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्वरी। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप, विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केन्द्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमरीका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लियंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण।